0: परवर का ये सॉन्ग है और आप जानते हैं रफ़ी साहब कितना सुंदर सुंदर गीत को गाया है, तो ये आप सबके लिए भी है।
1: There is no need for panic. They are crossing some highways. Please remain where you are. And for your entertainment, Miss Colette will give you an exciting cavalry number.

और आप नाराज खुदा कह रे करे दोस्तों क्या जरा ठहर तुझे समझाऊं। पूजा का फूल है मोफी का नाम है नाइटिगेल लता जी का सॉन्ग है।

Ikarare, Sahe, Joy Mukherjee, Vijayanti Malaka, ये फिल्म इशारा जोंग का और ये नाम है. और दोस्तों ये सब पुराना पुराना गीत कितना अच्छा लगता.

अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है और सोनू निगम अलकायंगनी का ये प्यार भरे लवली सॉन्ग के बाद हम चलते हैं उदित नारायण जिस बहुत खूबी से इस गीत को गाया है। आओ सुना जाए ये क्या है।

और प्यार का पहला पहला नाम दोस्तों ये लवर्स के लिए है। तो एक गीत है यहां पर हम हमने प्लेयर पे रख चुका है अखियों के झरोके से और ये एक मस्त भरी टॉप सॉन्ग है दोस्तों, आओ सुना जाए।

और अनोखो अन अन अखियों की झरोके के बाद हम चलते हैं। आप जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, हमारा प्यार आप तक पहुंचे। और ठंड चाहे ठंड लगते हो और चाहे गर्मी का मौसम है, रेडियो फाहून आपके साथ है। और धरती पे जहां भी रहेंगे, हमारा तुम्हारा प्यार अमर रहेगा।

और तुमसे प्यार इतना हुआ है कि साथ में राज बब्बर क्या कहते हैं वो भी सुना जाए।

शामिल जो होगा तो और क्या क्या नहीं होगा आपको हम जरूर बताएंगे। उसके बाद हम चलते हैं वो मेरी नींद मेरा चैन की ओर है।

और ये प्यार करते हैं तो दर्द भी सहना सीख लीजिए, कारण प्यार में दर्द तो जरूर होता है, नींद भी उड़ जाते हैं। और साथी साथी 1982 का एक स्पेशल गजल सॉन्ग फ्रॉम जगदीप।

आया जगदीप सिंह एक हिट गजल सॉन्ग थे हमारी आ रही साथ ही साथ हम चलते हैं द टाइगर ऑफ इंडिया मिस्टर कुमार यानू अलका याग्निक क्या सुनाते हैं यार नहीं कल तक हिट सॉन्ग वन जॉनी नंबर वन।

कर दिया और जाने क्यों मुझे मालूम नहीं दोस्तों, अगर आपके मालूम होगा जरूर कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं, मोहब्बत लोग क्यों करते हैं और ये क्यों करते हैं। नैतिकेल लता जी आपसे पूछ रहे हैं, अगर मालूम है तो जरूर बता देना।

मोहब्बत करते हैं क्या आपको ये मालूम हो तो जरूर बताना कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कब करते हैं। तो मोहब्बत कई तरह के होते हैं और मोहब्बत अगर आपको मालूम है तो जरूर बता देना। और एक और हम चलते हैं मोहब्बत का सॉन्ग, और आज हम मोहब्बत के प्यार के मूड में हैं। हम चलते हैं द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू की ओर, और ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए।

खुद से वादा कर, खुद से वादा कर, खुद ही को ज़ुबान दे, खुद से वादा कर, खुद ही को ज़ुबान दे, नहीं रहोगे कदम। खुद से वादा कर, खुद को ही ज़ुबान दे कि नहीं रोकेंगे अपना कदम, जब तक पहुँच नहीं जाता, जब तक पहुँच नहीं जाता मुकाम पर।

कोयल बोले और दुनिया डोले, हमको सुनाए सुने वालों लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी। और उसी फिल्म का नाम सरगम, फिल्म सरगम से हम आपको लेकर चलते हैं वही मशहूर गीत जो यहाँ से हम मिलकर सुनेंगे। और गीत का बोल है दफली वाले दफली बजा।

हाँ बस उधर बेकरारी किस लिए है। बलबीर और मोहम्मद रफ़ी जी ने हम सबको ये सुंदर सा गीत और सुनाए हैं। दुनिया का हर चीज़ का विकल्प है, यानी कि त्वे फॉर्मख, दुनिया का हर चीज़ का विकल्प है किंतु स्वयं का कोई विकल्प नहीं है। ये बैंत अलेन एन एन एन पर्सोन, एन यूनिक पर्सोन, इसलिए सबसे अधिक स्वयं को स्वस्थ व प्रसन्न रखें। अपने आप को खसोंद एन खलुक रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है।

ये गोटेदार लहंगा जो हमको गा कर और सुना दी है वो है रफ़ी जी और साथ दे रही थी आशा भोसले जी ने।

थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा।

फिल्म मिलन से निकाला गया सुनने वालों ये सुंदर सा गीत जो लता जी फरमाई कि तो है सवरिया ना ही खबरिया। सच बोलने से हमेशा दिल साफ रहता है, सच बोलने से हमेशा दिल साफ रहता है, अच्छाई करने से हमेशा मन साफ रहता है, और मेहनत करने से, जी हाँ, और मेहनत करने से हमेशा दिमाग साफ रहता है।

मित्रों, आज जो बतलाने जा रहा हूँ उसे आज भी सुनना और जीवन में जरूर उतारिए। इसलिए तो हम बार बार ये बतलाते हैं ना, हम भी सुनते हैं, हम भी अपने जीवन में उतारते हैं मित्रों। तो ज्ञानी व्यक्ति, ध्यान करना, ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, सभी मरेंगे। आप तो रोज देखते हैं मित्रों, तो शोक किस बात की। अच्छा, इंसान के नाते रोना पीटना हो जाता है। केवल ज्ञानी ही मित्रों, केवल ज्ञानी ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता है मित्रों। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता, केवल तीन शास्त्रों से प्राप्त होती है मित्रों, धर्म, धैर्य और साहस। धर्म, धैर्य और साहस मित्रों, यही तीन चीजों से प्राप्त होता है।

दोस्तों, ईश्वर से सर्व संबंध अनुभव करने का अर्थ है कि आप सभी इच्छाओं से पार जा चुके हैं।

मित्रों, कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि ध्यान करना मित्रों, हम का बोलते हैं अपने देश में, कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। किससे? अपने कर्मों से महान बनता है, जैसे आप, और ना जैसे बगल वाले घूसखोरी देकर डिग्री ले लेते हैं वगैरह, बोले हम महान हो गए। खबरदार, पास हो गए। मित्रों, कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं, साथ छोड़ ही जाते हैं। शायद इसका अनुभव है आपको, है जिस पे आप बहुत भरोसा करते थे। अमान निमानी लूर खदराज, है मित्रों, तो धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, जरूर होगा। और धर्म का नहीं मित्र, गरीब है या अमीर, ये मायने नहीं रखता है, मतलब नहीं रखता है, बल्कि वह आपकी बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, दिसना अतोरी, साथ कितना देता है और कहाँ तक मित्रों, ये मायने रखता है और ना कुछ और है। दोस्तों, इन सब बातों पे ध्यान रखते हुए आगे सुनिए भजन को।

मित्रों, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरा में चमकती है, ठीक उसी प्रकार मित्रों, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है। को आप भी कोसते हो ना? नहीं तो ठीक है। तो मनुष्य अपने भाग्य को कोसता है हमेशा ही, तो ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। आपका कर्म आपके हाथ में है मित्रों, और ना किसी और के हाथ में है।

मित्रों, जीवन बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत बनाने के लिए हम खुद हैं। खुद ही हम जीवन को खूबसूरत बनाते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। और जब बिगड़ जाता है तो हम उंगलियां दिखाते हैं किसी और के, वो करे कारण भैले, वो कराई से, वो एक न कराई से, तू अपने कर लो। मित्रों, खबरदार, उंगली मत दिखाया करो। सत्य से कमाया धन, मित्रों, सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है। और छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरा नहीं होते तो रास्ता बदलिए, अपने रास्ता को बदलिए, अपने तरीका को बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं, पेड़ भी बदलते रहते हैं अपने पत्तों को। जरिया थोड़ो बदले है, तो तू कहे कि अपना जरिया, अपने तरीका को बदल दो जीने के। उस साइड ठीक नहीं होगा ना, तो उसे बदलो, बदलो मित्रों।

दोस्तों, किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे, ध्यान करना, किसी के संगत से आपका विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना मित्रों कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनके विशेषताओं से सीखता है। मगर आप तो नहीं, आप सीखते नहीं, आप तो जलन करते हो। ऐसे बात नहीं है तो बहुत अच्छी है, तो देखकर उनको विशेषताओं को सीखो, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करो, जलन मत करो, क्योंकि जलन में क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मित्रों, कुछ नहीं मिलेगा।

दोस्तों, विश्वास के बगैर दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता है। ध्यान करना, आप अपने बाल बच्चों को अब खुद समझे। विश्वास के बगैर दुनिया में कोई भी रिश्ता हो ज्यादा देर तक कायम यानी टिक नहीं सकता है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता मित्रों, तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। और जो

लक्ष्य में खो गया समझो वो सफल हो गया, और जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। जरूर सफल होंगे आप मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्यषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमम। सुनने वालों, सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं संजय, जो आपके साथ जुड़ गए हैं, कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करूंगा और कुछ सुंदर सुंदर भजनों के साथ।

जो बीमार है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिसके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत सा हैप्पी बर्थडे। जो अपने तैयारी कर रहे हैं कुछ शिक्षा दीक्षा लेने और देने को, तो उनको भी माता सरस्वती को ओर से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी के ओर, तो उनको ओर से ये कहना चाहूंगा, हर बार की तरह कि गांधी जी को भूलना नहीं। ये मत सोचना कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोच जा आपको रहेंगे तो ये, अगर मैं आपसे ज्यादा ना कह दूं तो ये जरूर स्पर्श है कि आप अपना समय पे पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे।

सुनो लो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा दोहा हम सबके लिए लिख गए हैं। और तुलसीदास कह गए हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान।

इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, अहंकार और लालच भरे हुए हैं, तब तक एक ज्ञानी पंडित और एक मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों समान होते हैं।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूँ और एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

स्वस्ति माहौल के आवास में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हमारे सभी कर्मचारियों जो हमारे सभी कोलेग खास होते हैं उनके ओर से एक सुंदर सा भजन के ओर बढ़ेंगे। भजन का बोल दो तीन है जिंदगी।

आई जगत में काई करो, यानी कहने के तात्पर्य ये है, हम जगत में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाए जिसे हमें कोई बाद में कुछ बातचीत करके, ऐसा ना हो कि हमारा जो कर्म किए हमने वो कर्म ऐसा है जिसके बारे में लोग नेगेटिव बात करते रहे। दोस्तों सुनने वालों, बातचीत, बातचीत ये दो शब्द ही है, पर की जाए तो दिलों को कई मैल धुल जाते हैं। एक सुंदर सा भजन और हम चलाने वाले हैं, जो हमारे स्टूडियो यानी फाहोन रेडियो का सभी कोलेगास की ओर से।

स्वस्ति मिश्रा के आवाज़ में ये सुंदर सा भजन कि तेरी शुक्रिया है सुबह की पहली प्रणाम कि हे ईश्वर आपकी कृपा से एक नया सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। आपकी आभार हूँ मेरे सभी मित्रों और सभी संबंधियों, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु को प्राप्त करे। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं सुनने वालों, और ये भजन भी सभी को खास हमारे डायरेक्टर कुमार घिराव जी के ओर से, जॉनी सुरजबाली जी के ओर से, शांता खेमाई, रजेश बदलू, राजन द्वारका, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, रोसिता गिरजा सिंह, सुरेन भगवान दीन, बबली आसरा, रोमियो हाउस, संजय भगवंत, गंगा चंद्र जी और यूसुफ सितु, बीबी साहिबा, रहीम बख्स जी, श्याम पूरन, अनुराधा चंद्र जी और राजेंद्र सिंह हैन और अनिल सरजुग जी के ओर से ये सुंदर सा भजन।

जब कुछ समझ में ना आए तो सीताराम गाइए, और यही संदेश, जो सुंदर सा संदेश हमारे फाहुन का सभी कोलेखास की ओर से रखा गया, और एक मैसेज जो उत्तम नगर भारत से आया है, ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है, और संदेश ये है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। तो ये सुंदर सा संदेश भाई ईश्वर जी जो उत्तम नगर भारत से और ये संदेश को भेजे है, एक बार और उसे दोहरा दिया जाता है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

होगा वही जो राम ने लिखा है। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने अजय तिवारी के आवाज़ में। सुनवलो, हमारे पास मोहन गार्डन भारत से भी एक और मैसेज आए है कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। ये सुंदर सा मैसेज श्रीमती सुनील जी जो मोहन गार्डन से भेजे है। बहुत खुशी के कार्यक्रम को अन्य और स्थानों पे भी सुना जाता है। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और एक और सुंदर सा भजन के ओर बढ़ रहे हैं।

जया किशोरी और सोनू निगम के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने जो हमारे देश में सफर करने को आए हैं। हार्दिक से स्वागत किया जाता है और कहना ये चाहूँगा कि हमारे देश में हॉलैंड में कितने मंदिरों हैं, जैसे कि देन हाग में राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर जो हर रविवार को और लगाया जाता है शाम में 2 बजे से 5 बजे तक, मंगलवार को राधे कृष्ण मंदिर जो 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, सेवाधाम मंदिर जो देन हाग शहर में वो भी शाम को लगाया जाता है हर रविवार को,

अलमीरा में विष्णु मंदिर जिसे हम गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं, वो भी हर रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। ऐसे भी हम लोग के देश में जो सुंदर सुंदर मंदिरों का स्थान है जहाँ पर हम सब जाकर के सत्संग आदि कर सकते हैं और कथन वहाँ हर अलग मंदिर दिन पे कथा को और जो व्यास भगवान का प्रार्थना पूजन आराधना किया जाता है संदेश को रखा जाता है। रोटरडम शहर में शिव मंदिर और शिव मंदिर अरनहेम में भी हर रविवार को जो सुबह में रोटरडम में और सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक और अरनहेम में जो कि 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। हम एक और भजन की ओर बढ़ेंगे, राधा रानी का चरण, जो कि चित्रलेखा जी के आवाज में रखने वाले हैं।

राधा रानी के चरण प्यारी प्यारी, चित्रलेखा जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम एक और मैसेज जो प्रदीप जी जो उत्तम नगर से हमारे लिए भेजे हैं, और ये मैसेज का बोल ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। तो भाई प्रदीप जी को बहुत सा और नमन करता हूँ, और ये सुंदर सा संदेश रेडियो पर रख दिया गया। हम एक और सुंदर से भजन की ओर बढ़ेंगे। सुनने वालों, जया किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन।

सुनने वालों, मैं संजय आपके साथ जुड़े हुए और ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं, एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं संजय। क्योंकि पुलिंग स्त्रीलिंग में तो कभी गलती भी हो जाता है, विश यू अ वेरी गुड डे।

अगर आपका दिन एक शुभ दिन हो, यही आशा लेकर हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जुड़ गए हैं।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुनाह है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी, ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं। तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

स्टूडियो में तो थोड़ा बटन ज्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटन किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

सुंदर सा गीत जो निकाला गया, एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम 6 दर्शन स्थापन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे।

0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

वापस आऊंगा। कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की, देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह, जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

अ ग्रेट सॉन्ग हल्लालो, जिसमें काम किए राम चरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं।

आर्यन खान और राश्मिका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधा दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से और रहे और दूसरा जो अटूट विश्वास।

प्रीति डिमरी और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूंगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए हैं, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

इमरान हाशमी ने फिल्म में काम किए। दोस्तों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, 2400 घंटा आपके साथ, जो हम सब जुड़े रहते हैं, हमारे सभी कोलेखा साथी अपने अपने समय पे और यहाँ उपस्थित होकर के कार्यक्रम को रखते हैं। किसी ने मेरे पास ये संदेश को भेजा है कि हद से ज़्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। तो आप खुद समझदार हो, समझ जाना क्या संदेश देना चाहते हैं। जो व्यक्ति ने हमें हमारे पास ये संदेश को भेजा है, एम फी नाम है उनका, हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

सैयारा फिल्म से निकाला हुआ ये सुंदर सा गीत एक नया फिल्म है जिसमें आहान पांडे जो काम किए हैं और मेरे ख्याल से ये आहान कोई और नहीं है चौंकी पांडे का भांजाल यानी कि उनका नेफ कहा जाता है। दोस्तों मैं हूँ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और कुछ नए नए गीतों के साथ हम कुछ समय तलक आपके साथ व्यतीत करेंगे। दूसरा गीत जो हमने प्लेयर पर खोज करके रखे हुए हैं, एक फिल्म जो 2025 में नई खंती मार्च में जो जिसका प्रीमियर हुआ है उससे पहले कितना पैसा कमा चुका थे और फिल्म जो एक मारतार वाला फिल्म है खूब धुरंधर नाम जिनमें रणवीर कपूर रणवीर सिंह ने काम किया है ना, रणवीर सिंह ने काम किया है और आदित्य धार जो ये फिल्म को डायरेक्ट किए हैं। तो इसमें भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ देखते हैं और प्लेयर पे तो चुन करके मैंने रख चुका है तो चलाते हैं और देखते हैं उसमें क्या और

एक फिल्म जिससे बॉलीवुड काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, और एक फिल्म जो कि कहा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के कुछ समस्याएं इसमें रखा गया है। दूसरा भाग जो बनाया गया है वो लगभग 4 घंटे के है, और एक फिल्म जिसे हम लगातार देखते रहते हैं। हमने तो कहा गया कि बियोस्कोप में ऐसा होता है माहौल कि शायद इंटरफॉल भी नहीं रखा जाता है, और कोई उठकर जब वहाँ से बाहर निकलता नहीं है, क्योंकि ये इतना सुंदर रूप में अब बनाया गया है कि आप सौ न्यूज़ भय हम नाटक आएगा। इसी प्रकार से और भी फिल्मों जो बॉलीवुड 2025 और 2026 में रिलीज करने वाले, एक और भी सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हैं, कोई और नहीं, और जिसमें अक्षय खन्ना और जानवी कपूर के

सुन, कोई और नहीं, बस सिर्फ तुम हो, तुम ही तुम हो। और एक फिल्म जिसमें अक्षय खन्ना, जानवी कपूर ने काम किए, रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग जो 2025 में आया। अगला गीत हमने प्लेयर पर चुन करके रखे है, सुनने वालों, टाइगर 3, सलमान खान और कतरीना का फिल्म।

हरेक के प्रभु का नाम, तो सब कहते हैं कि कोई भी काम करो तो लेकर प्रभु का नाम। तो यहाँ तो अपना संगीत में उन्होंने ये रखा कि म्यूजिक स्टार्ट करो तो लेकर प्रभु का नाम, पर कहने के तात्पर्य यह है कि कोई भी काम शुरुआत करो तो प्रभु का नाम लेकर। अगला सॉन्ग जो हमने चुन कर रखे हुए है वो हम सफ़र मेरे शाहिद कपूर और कृति सनान, एक रोमांटिक सॉन्ग है जो भी नया 2026 में और ये फिल्म रिलीज किया गया।

सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत निकाला गया एक फिल्म जिसमें शाहिद कपूर ने 2026 में फिल्म रिलीज़ हुआ और हम सफ़र मेरा। हम अगला गीत जो चुन करके रखे हुए हैं और अगला गीत का बोल ऑल्सो बॉलीवुड दो रोमांटिक सॉन्ग देखते हैं और इसमें क्या संदेश रखते हैं, किस प्रकार से अपना रोमांस को और रखते हैं।

तू ही मेरा आज और तू ही मेरा कल, अ हिंदी इंग्लिश डुएट जो एत शेरान और श्रिया घोषाल अपने आवाज में रखे अति सुंदर रूप से और अपना रोमांस को प्रकट किए। दोस्तों हम अगला गीत जो दिल तेरा नाम रणवीर सिंह जिस फिल्म में काम किया है 2026 में जो रिलीज हुआ धुरंधर उससे एक और गीत रखेंगे।

0: समझ रहे हो, ये जगह सही नहीं है अर्जुन।
1: ये भूत बंगला जो फिल्म बनाया गया है और 2026 में रिलीज होने वाला है, प्रिया दर्शन फिल्म, जो काफ़ी दिनों से प्रिया दर्शन ने फिल्म नहीं बनाए थे और अब अक्षय के साथ, अक्षय कुमार के साथ जो ये फिल्म बनाया गया है, एक भूत बंगला जो एक कॉमेडी फिल्म में कहा गया है। और प्रिया दर्शन के फिल्म में तो कॉमेडी और कुछ उस हर एक फिल्म में उसका देखा जाए कि लोग एक दूसरे के पाछे दौड़ते तो जरूर है। और अभी तो रिलीज नहीं हुआ पर हाल ही में रिलीज होने वाले हैं। और अगला गीत जो हमने चुन करके रखे हुए दोस्तों प्लेयर पे, वो भी एक 2026 का फिल्म जो कि इमरान हाशमी और राशि खन्ना का फिल्म है, रोमांटिक सॉन्ग दिल में तू।

तुझे प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे अवश्य अवश्य। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप बहुत सारे प्यार पेश कर रही हूँ फाउन हिंदुस्तान रेडियो के जरिए से, और यही आशा उम्मीद है कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस हाल में हो, जरूर से खुश होंगे। कहते भी कि करो शुरुआत मधुर वाणी के साथ।

लता जी की आवाज में यहाँ से हमने श्रवण कर लिए है। मेरे पिता के थाली में से पहला निवाला किसे खाना चाहिए? पिता के थाली से पहला निवाला किसे खाना चाहिए? तो आपको बता दें कि पिता के थाली में से पहला निवाला अगर बेटी खाती है, जी हाँ बेटियाँ, आपके घर में बिटिया है और पिता जो भोजन करने बैठे, तो पिता के थाली में से अगर बिटिया खाती है तो पिता के ये तीन चीज़ें बढ़ती है। माना जाता है कि जब पिता भोजन करते हैं तो बेटी को सर्वप्रथम पहला निवाला उसके थाली में से जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना बड़ा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पिता के आयु बढ़ती है। ऐसा करने से यानी कि पिता के थाली से अगर बेटी पहला निवाला खाता है तो पिता के आयु बढ़ती है और पिता के रोजी रोजगार जो है उसमें भी वृद्धि होती है। और ऐसा प्रतिदिन करना चाहिए कि पिता के थाली में से पहला निवाला आप अपना बिटिया अपना कन्या को खवाएं।

0: फिल्म सागीर से ये सुंदर सा गीत निकाल दिया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये भी पिक्चराइज किया गया है, रिलीज किया गया है 1967 में। आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो,
1: प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी।

कितनी सुंदर से सुना दे लता जी की, कितना आसान है कहना भूल जाओ, पर इतना आसान तो नहीं है ना। आप मेरे साथ सहमत है ये मुझे पता है। आपको ये बताना चाहती हूँ, जो आप शायद अपने ज़िंदगी में भी ये सब महसूस करते हो और मेरे ख्याल से भी मैं माँ किए होगे, वो ये है कि देखो, कुछ लोग तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखना ही चाहते हैं, पर जब उनका मन करता है तब तक लोग तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, जब तक उनका मन करता है बस तब तक। कभी जताएंगे कि तुम अपने हो, हाँ कभी कभी वो लोग तुम्हें जताएंगे कि तुम अपने हो, और कभी ऐसा बर्ताव करेंगे कि जैसे आप उनको तुमसे मतलब कुछ ही नहीं। एक दिन ऐसा बात करेंगे जैसे उनके लिए तुम ही सब कुछ हो, हाँ कभी कभी ऐसा बात करेंगे कि तुम उनके लिए सभी कुछ हो, और अगले पल तुम्हें कुछ पूछेंगे भी नहीं। तो इसकी सलाह ये है मेरे प्यारे सुनने वालों कि जो ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके, हाँ जी हाँ, जितना जल्दी हो सके दूर हो जाना, हाँ जितना जल्दी हो सके दूर हो जाना, क्योंकि जितना तुम इसमें फंसते जाओगे ना, बाद में उतना ही मुश्किल होगा बाहर निकलने में। तो आप समझदारी से काम लेना और परखना अपने इर्द गिर्द में कि आपके साथ ऐसे तो नहीं होता है। आप जितने जल्दी इनमें से निकलोगे आपके लिए उतने ही फायदा होगा। Anders wordt u gewoon keer op keer gemanipuleerd en dat verdienen wij niet.

फिल्म लापरवाह से, फिल्म लापरवाह से मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म। जी हाँ, नेहती एनन ताख्तख में ये पिक्चराइज किया गया है। किशोर दा जी की आवाज में साथ दे रहे थे चंद्रानी मुखर्जी। साथ ही साथ ये बताना चाहती हूँ कि कलयुग के साथ करवे सच, कलयुग के साथ करवे सच, वो ये है। पहला ये है कि बुरे वक्त में सगा भाई भी साथ ना देगा। कई परिवार में ऐसे भी होता है कि बुरे वक्त में सगा भाई भी साथ ना देगा। आप जिसे खास, जिसे आप खास समझोगे वही दुख देगा। आप जिसे अपना समझोगे वही आपको रुलाएगा, वही आपको दुख देगा। स्त्रियां भी विवाह करने से इनकार कर देगी। स्त्रियों भी विवाह करने से भी इनकार कर देगी। और ये भी एक कड़वा सच है। अब वो ये है मेरे प्यारे सुनने वालों की, प्रेम के नाम पर सिर्फ शरीर भोगे जाएंगे। प्रेम के नाम पर सिर्फ शरीर भोगे जाएंगे। ढोंगी व्यक्ति जो है उनकी समाज में श्रेष्ठ कहलाएगा। ईमानदार आदमी पेट भी ना भर पाएगा। और बच्चों और माँ बाप में नहीं बनेगी।

तो जाने वाला है और ये पल भी बीत गया है। जो शब्द हमने कहे वो भी चला गया, सेकंड चला गया, मिनट चला गया, ये गीत जो आपने सुने ये भी आपने सुन ली है। अगर आप ये सुनना चाहते हो तो हमको दोबारा चलाना पड़ेगा। पल चला गया, पल चला गया, आने वाला पल जाने वाला है।

लता जी की आवाज में यहाँ से हमने मिलकर और श्रवण की है कि मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं भी एक छोटा सा बच्ची हूँ अपने ही माँ बाप की, अपने ही प्रभु की, जो उनके दी हुई ये जिंदगी है, उनकी दी हुई जिंदगी जो वही संहारेगी, हमारे तो हाथ में कुछ नहीं है, देने वाला वही है, लेने वाला भी वही है, संभालने वाला भी वही है। अगर हम इसे समझ जाए तो जीवन आसान हो जाता है।

कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, माटी के मोल बिक जाएगा फिल्म का नाम धर्म करम, फिल्म का नाम धर्म करम।

कि कमाने निकल गई। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गई। जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी। फुर्सत मिला तो बच्चे कमाने निकल गए। वह हरे जिंदगी।

वाकई में बच्चे मन की सच्चे, इनसे कोई इतना निर्मल होता है बच्चे। अगर हम उनका सिद्धांत भी अपना जीवन में प्रयोग करें तो कितना अच्छा होगा, आप ही सोचो। पर हमारा क्या होता है, हम जस जस उम्र बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारा दिमाग में ना जाने कहां से बस मैल चढ़ जाते हैं।

0: ओल्ड इज गोल्ड, ये पुराना खजाना आपके लिए लाई गई है कि चंदा मामा दूर से
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735232447। इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 365 22

से पहले और आज से ज्यादा हमको जो नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा, उसका हम के इंतजार करेंगे। पर ये सुंदर सा गीत आपके लिए।

सुना दे कि आज से पहले और आज से ज़्यादा जो हमारे नसीब में नहीं हम जो लिखवा कर आए तो नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। फिल्म का नाम चित चोर।

जीना इसी का नाम है मेरे दोस्त। मुकेश जी की आवाज में फिल्म अनारी से निकाला गया।

वाह रे जिंदगी, वाह रे जिंदगी, जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, जीवन के आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को शरीर को ठीक कराने में लगाया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे से शरीर को ठीक कराने में लगाया, ना शरीर बचा ना पैसा, वाह रे जिंदगी। जो पैसा हम कमाते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, पैसा कमाना चाहिए पर उसे अच्छे तरह से भी उपयोग करना चाहिए। पैसा कमाते वक्त भी आप अपने आप को भी वक्त दें, अपना परिवार को भी वक्त दें। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा ओढ़ो पहनो, घूमो फिरो उसके साथ, ना सिर्फ पैसा कमाओ कमाओ कमाओ कि ताकि बाद में वही पैसा आपके शरीर बचाने में लग जाए। तो रोना सिर्फ रोना ही पड़ेगा, और समय जो निकल जाएगा तो समय वापस नहीं चला आएगा, वापस नहीं आएगा समय। अगर हम सोचे जब हम बच्चे थे और अब कहाँ हैं, तो वो समय तो चला गया, हम सिर्फ याद कर सकते हैं। हम अक्सर लोगों के बीच में बैठते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं तो सुनते हैं कि वो सब अपना बचपन, अपना माँ बाप के साथ जो वक्त गुजारे हैं, माँ बाप के साथ जो अच्छा किए हैं, जो बनवास किए हैं, वो सब याद करके वो कभी पछताते हैं, कभी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। हाँ, साथ में बैठ कर वो कहते हैं मैं ऐसे किया था, मेरे माता पिता ऐसा था। बचपन में सभी बच्चे शरारती रहते हैं, तो वो पल जल चला जाता है मेरे प्यारे। बचपन तो इस जन्म में नहीं आ पाएगा, हम चाहोगे चाहते हुए भी हम वापस नहीं ला पाएंगे। बचपन गया, जवानी गया, जब हमारा भी जब बुढ़ापा आता है तो हम बैठ के सोचते हैं, तो अच्छा करोगे तो अच्छा ही बैठ के याद आओगे, अच्छे अच्छे याद आएगा। बुरा जो किए होगे तो बैठ के पछताओगे। सत्संग करने से वो पछतावा जो है कम हो जाता है।

रिहायशी या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 7 4। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 365 22.

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम राजयू फाहन सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी नाम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश विदेश के समाचार सुनाना है, हमारा काम यही है, हमारी मोहब्बत भरी और प्यार की पैगाम।

तो दोस्तों आपको हम लेकर तुरंत चलते हैं अपनी समाचार की ओर, और हम चलते हैं तुरंत सूरीनाम की ओर, हम चलते हैं हमारी जनता सूरीनाम की ओर हम चलते हैं। तो सूरीनाम में भैया चिनुआ लोन सोना भी बड़ा जोर से नाम में खोदे भाई, ना खाली जूका लोन खोदे है या का बोले ब्रासिलियान या दूसरा जात या आई एम गोल्ड खोले, चिनुआ सूरीनाम देश में भी सोना होना बड़ा जोर खोदे भैया। तो ऐसे चिनुआ सूरीनाम देश में सोना खोद के और फ्लिक लेके आयल है सोरखन हो पर सोरखन होफली फेल पे उतरल है। हाँ ये बातचीत हो रहा है आई के यानी कि उतरल है सोरखन होफली फेल परमारिबो में बेनलान से आयल है और 4.5 किलो सोना रिवो खोद लेके आयल है भैया चिनुआ। तो उतरा सोना पाई से प्लेन लेके फ्लिक्ट लेके आयल लोग सोरखन होपे 4.5 किलो रिवो खोद में से बेनलान से आयल है और बात में सब एगो त्योता फिक्स में बैठे ले घरे जाए के भैया। अब घरे जात रहा भैया रास्ता में एगो त्योता आलियोन आयले जेमा 3 गो लुटेरा रहा वापन ले के भैया कटली से ले के और बोले हैगा 2.5 किलो सोना ले के फरार हुई गे है रिहती खोम्पर स्ट्रांत में। तो पारामारी भूमि का रास्ता का नाम खोम्पर स्ट्रांत हुआ पे लेके भगल है भैया 2.5 किलो सोना लेके भगल है। एकर बारे में अनखिफ्त भइल है तो सिपाही खोज बीन करे है कि के सुनवा ली से भैया यहाँ बतावे है कि सोना 2.5 किलो लेकर लुटेरा भागे भाई। तो बोले नार ऊपर फालखिंग से नार द खोपर स्ट्रांत अनखिफ्त भइल है ऑफस्पोरिंग अनहोल्डिंग बिना भइल है खाली ऑफस्पोरिंग भइल है। और जैसे जैसे इसके बारे में खबर रहेगा आप लोग को हम बताए लेकिन तुए ना हल्फ किनो सोना रू बारा ढेर है भैया। तो भैया गया दिन भी आ गया हमारे प्रोग्राम में जन्मदिन बधाई हो। तो यहाँ पर और आगे चलते भैया एगो औरत के समय लाश लेक पाई से भैया रवि और ये पाई से सिरालको वेख कहीं सूरीनाम देश में और एक औरत के लेक मिलल है और वो गंधात रहा लेक हुआ भैया। गंधात्रा मतलब कि अनबिंडिंग हो गया रहा कई रोज से मारा पड़ा रहा हुआ पे। तो जो हुआ सब गैल है तो पाई से औरत के बिना कपड़ा के भाई नंग ढिड़ंग औरत हुआ पे पाई से और बतावे फोकस इसते इन्फॉर्मेशन बोले एगो आदमी है अब सुख ना क्रैदन उगैल रहा तू जाने हैं सबहन घास भूसा बहुत जोर चुका लोन तूरे हैं दवाई वाई बनावे के। तो के सब हम बोले क्रैदमान तो ये क्रैदा गैला अपन जंगल में खोजे तब ये लाइक हुआ पाई से और बताई गई हैगा तो संस्कृत लेखा फनन फ्रो और बताई गई हैगा कि अने जब उके नंग ढड़ंग मिलल है द इज द कांस खरोद नाम लगता है मिस ड्राइव in its in this mort speel bullet ter plaatse were leven loose lichaam van vrouw aangetroffen al betaai gei hega die in hoeverre hij betrokken is bij deze zaak wordt na onderzocht op sipa hij khoj bin kare ki kauni ke mari ze bhaiya betaai vrouw met een lichte huidskleur en glad haar तो ई जुका ना भैया तो इंगी हुई नहीं का बोले ब्रासिलियन हुई कोई हुई बतावे लिखते है इसका क्लर एर खलात हार इन दिस सा के फलास नो हिन ऑफिशियल फॉर्मेशन आंगेव ते गदान। तो कर मतलब उ जुका ना भैया हिंदुस्तानी हुई मलेनी हुई बाबूले चिकन बार है। तो ऐसे मानचित हो रहा है हमारी जनता जैसे जैसे समाचार रहेगा आप लोग को हम बताएंगे। अब देखो भाई यहाँ और बात है ओएम भैया ओएम जो है तो लोग जानो है
हम आप लोग के बताए थे कि एगो औरत रहा गयानीज रहा अपन स्टीवसोन के आंड बरिश के स्टीवसोन के आप लोग को बता रही पुराना साल के बात है, पुराना साल के बात है। औतियार रहा तो एगो द्रियन त्वेंतक यारख माम शैला तेई ओकर नाम रहा तो और बोले हेगा एगो आठ बरिस के लड़का के को स्टीव सोन के जेकर नाम रहा येडन अमोर भोला ओकर लड़कवा के पीठी में भोंक के लड़कवा के मार ढारे रहा और भैला दोनों प्राणी में झगड़ा भैला कॉन्फ्लिक्ट रहा कालकिता स्त्रात में तो ई लड़कवा के आठ बरिस के औरतिया भोंक के मार ढारे रहा वारा अखेंद ने वो उनका मन लीफ लोग से लिखा फा येदन आन खतरोफन और बोले है लाख ऑफ्रॉन इन प्लस ब्लूथ एंड फरतूंद खीन टेकन फा लीफन लड़कवा आठ बरिस के मर गए रहा। तो आप लोग के शायद याद हुई एक बारे में आप लोग को हम न्यूज में बताए रही और आज ओके यानी कि अब ओके फोर्दर यानी कि अब ओके स्ट्राफ मिले औरतिया के दोस्तों स्ट्राफ मिले औरतिया के अब बोलियो कि कितना दिन के जहलिया ई पाई से आठ बरिस के लड़का के ई और झका बोले हेगा एक बारे में बड़ा ऑफहेफ हो गया रहा सूरीनाम देश में दोस्तों। तो ई औरतिया के स्टीव मुदर हैगा स्टीव मुदर हैगा बताई गई हैगा देर तक यार के ओके सेल जहल मिलल है 13 बरिस के ऑफ एस करे से जहल पुराना साल तो इरेशन 25 में ई 8 बरिस के लड़कवा के मां ढाड़े रा छोड़ी भोग के फुलखस एट ओएम वास एट द आफन हेफक ऋषि और स्टांटेशन द फादर फनेसला तो फॉर अब बताए गए हैं अपाउ एंड दिन फ्रेंडेन मांशेला आदमी एक नाम रा अपाउ और एक वाक नाम रा मांशेला और इतना एक्सकालेर भैला ना है चल अल्कोहल हाद खने तो दारू ढकोल ढकोल दोनों पर दोनों लड़े हैं और जाए के आठ बरिस के लड़का के और ये जान ले ली भैया इतना फुदूब देखे ला इतना मोह लगे लड़कवा कोई के दे देवत पोस लेवत भैया के लड़का बिगे ही आदमी कुत्ता बिलार पोस लेवे है इतना अच्छा लड़का सब कोई पोस लेवत भाए और जाए के आठ बरिस के लड़का पेटी में और छोड़ी भोग के ये औरतिया मार ढाड़ी सोकर स्टीव soon raha for clarifying van de vader bleek dat er haar van aanvankelijk respectfully maar de sfeer omsloeg naar deze vriendin zich eraan stoorde dat hij alcohol aannam van een buurman bole auratia bole to adamia bole to kahegele buurman ke daru pile batte daarna ontstond een woordenwisseling bole de verdachte ging volgens de woning binnen en sloot zich op getuigen verklaarde ki auratia vernieling aanrichtte in de woning en een mes uit de keuken pakte. Daarbij zou zij hebben geroepen dat zij de jongen wilde doden. Kort daarna brak de vader de deur open en trof zijn zoon in de slaapkamer. Toen hij had gehaald dat hij ook een mia gehele buurman lage daarop pie en aard bedis ke lardka ke jai ke jan se maar deze lardkwa jauratiak na raha u lardkwa raha voor andere huwelijk met de 8-jarige jongen werd nog korte tijd een teken van leven waargenomen bolle hij overleefd ter plaatse van gevolgen van de steekwonden in de rug, waarbij zijn linkerlong werd geraakt. Volgens een medische was er geen sprake meer. Ja, toen Iberi Doekke baat, een buurman die eveneens bij de gebeurtenis betrokken raakte, bevestigde tegen de politie dat hij de verdachte na incident heeft vastgehouden tot de komst van de politie. और बीरमान पीपा कल से तो ऐसे बात है बड़ी दुख के बात है दोस्तों बहुत दुख के बात है आठ बरिस के लड़का के ओ एम एस दर्तक यास टेकन टेकन स्टीव मुदर फॉन दोस्त टेकन तो ओकर बाप के संगे रहे हैं और ओकर लड़का के आठ बरिस के जान से मार दी से हमारी जनता बहुत बहुत दुख के बात है। तो रोबी गयादीन के साथ है सीफ बी से चित्रा अवतार भी आ गया हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं साथ साथ धर्मेंद्रा भी आ गया है धर्मेंद्र श्री भी आकर हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं आपको बहुत बहुत स्वागत देते हैं सूरीनाम के लोग जितना हमारा प्रोग्राम की सुनते हैं आपको भी बहुत प्यार यहाँ से देते हैं। तो अब देखा भैया वापन जबरदस्त सूरीनाम देश में मिलल है और कौन वापन मिलल इलाखाल वापन मिलल है इलाखाल वापन मिलल है एगो पुलिस ब्यूरो के नाम बा पोस्ट है रेडी दोती त
तो रेडी दोती जो ने हमारे जनाब लाका वात्रा कंती दोस्तों तो हुआ पॉलिसी कंट्रोल भले रेडी दोती पारा में तो बताई गई इलिखाल बंदूक दुई को मिले लेगा बंदूक के लाई मिले और साथ साथ दुर्यक्ष मिले भैया करिया निशान तेरानों में दुई आदमी के पकड़ान है और बताई गई हैगा रेडी दोती में ही मिले ले योगदन सफाना में तेज कंट्रोल फन फुर्तेक तरफ फन अखेंदे इन द डैशबोर्ड का जे अन ट्रांसपरेंट प्लास्टिक साक आन में तो सब्सटेंसी दी ऑफ मारिवाना लीक भैया और बोले 30 यार के बस्तीर के पकड़ी से बोले बेई रहे इधर को रहा को या खबर मिले ले कॉल ऑफ साथ में स्कर्प पत्रों ने और बोले है ऐसे तो ये सब तो जरूर जाते ही रोफूफ करे भैया और ये सब गांजा फांजा पी के अब देखो भैया आओ एम वार्स क्यों थे कल्टीर ऑफ ट्रेडिशन इज नोइट एक्सक्यूजर फॉर सेक्स मैन मिंदर यारखन देखो भैया मिंदर यारख बोले कल्टीर तो जाने सबन बोले हमार कल्टीर में हैगा के मिंदर यारख के संगे त्रोह कर सके तुर जाने बेनलांत में छोटा छोटा लड़की के सबन ब्याह कर देवे या अनमी हो या लड़का ले ले तुलन जुका के लड़कन को जानो है तो ऐसे बात है बाकी भैया ओएम का बोले हैगा उपमार मिनिस्टर का बोले बोले हैगा तू चाहे जोन जात के बाटे चाहे जहां जोन कुलतुर के बाटे मु बोले वेत में मिंदर यारख के संगे तो के सेक्स न चाहि करके तो ई बात महाबली जेमी भी बहुत दिन बाद आकर हमारे प्रोग्राम में जुड़ गया है तो भैया महाबली आपको भी हम स्वागत करते हैं इतना दिन बाद आइए हमारे प्रोग्राम में साथ ही साथ फनेसा दोस फनेसा भी आ गया है फनेसा आपको भी हम बहुत प्यारो उस्ताद के उस्ताद महा उस्ताद सुंदर हीरा लौंडा के नाच वाला भी आकर जुड़ गए आप सबको बहुत प्यार यहां से देते हैं और स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में जुड़ने को तो देखो भाई क्या हुआ बोले हैगा ओएम बोले है ना दुर्कलक बोले बोले कुलत्री त्रादिसी में ना है मेंदर यारख के संगे सेक्स करके द बूस का फॉलक नर आन लेडिंग फन अन रेसेंट स्ट्रफ साक एंड इट फॉर ऑल खरेक ऑफ द बस्केनर फन मेंदर यारखन ओएम बोले है कुलत्रीले खबरेकन ट्रेडिशनल अन ट्रेडिशनल ओवरटेकन ऑन फैमिली अस्प्राक नोइट वर्डन खबरेक अस रेफार्डक फॉर सेक्सुअल मिसब्रेक ऑफ अंडर स्ट्रफवार जैसा भनका बोले हैगा बोले पलवार बोले बिटिया के ब्याह कर दी या बेटुआ के ब्याह कर दी तू मिंदर यारख बाटे मकनीट ओ बोले बतावे या ओएम बोले बोले उस सब एक्सक्यूजेस ना है उन खाक द अख्त खरोन फर बत रखेंगे बोले तू चाहे जोन बाटे बोले वेद बुक बोले है सबके कानून एक है सेक्स विल हैंडलिंग ए वर्ब इज प्राक इज फन बिनन ड्रिंग इन फन लिखाम बे एन किंड यंगर दन 12 यार कुनन लेडन टू द गेवंगनिस स्ट्राफ आन मैक्सिमल 15 बरिश के 12 बरिश लड़की से और कहा बोले तू सेक्स के लिए 12 बरिश लड़की के नीचे तो के मिनिमल 15 बरिश के जल हुई से के भैया लोन श्री नाम देश में तो याद करियो श्री नाम के वे थे तो हमारे देखा जाए श्री नाम से सुभाष भगवो भी आकर हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं तो भाई सुभाष आपको यहां से ने दनहा शहर से हम बहुत प्यार देते हैं और स्वागत करते हैं हमारा प्रोग्राम में भाग लेने को तो भाई सुभाग आप तो सुरिनाम देश में है तो वहां कानून जो है तो सबके लिए बना है ना कि जब तू झुका बाटो तो तू के मेंदर यार के संगे माख हैगा लड़का बनावे के सेक्स करे के ओएम बोले बोले द वेट इज फॉर इधर इन ओक सेक्सुअल हैंडलिंग बेटन ह्यूलक मेट ईमान फन 12 यार of ouderen, maar jonger dan 16 jaar zijn strafbaar wanneer sprake is van seksuele binnendringen. Oude Sora Bariske Nietje Bia Bhinatje Hinkereke. Daarom staat een maximale gevaarstelling van Bara Bariske. Oude Bole Gelboeter van vijfde categorie. Het OM benadrukte dat zedendelicten tegen minderjarigen ernstig misbruiken. Bole zijn er onder geen enkele omstandigheden worden gecontroleerd, mensen. Bole controleert na hoe Bole ze van tjoepetjoepet. और कले वारफान उस तरफ बार से बोले बिरखर्स ओदर फैमिली लीडर गसाग ड्राग से अंदर बर्तोकने वर्डन अपगरूपन सिनियालन फन सेक्सुअल मिसब्रेक में रिस्ट नीमे एन मेल्डिंग ते मांके बे द पुलिसी ऑफ बफुक्ते इंस्टेंसीज बोले तुलो मेल्ड करियो सिपाही में और की कोई अब देखो एगो यहां बताओ एगो रसेंट साग भले और लुंडा का नाम बा सनाईपी बीते हुए हफ्ता में बताए रे भैया सनाईपी भैया तुलोन से चाले
मीडिया देखो ही है ते इस सनाईपी के भैया कपड़ियन जहलिया में बड़ी मार मार लाते लाते मारी से सुभाष लाते लाते मारी से ओनी का कर ले रहे 15-14 बरिस के लड़की के स्वांगर कर ले रहा फिर 3 यारख में इसे की स्वांगर कर दे रहा ते एकर माई गेल हा नालिश करे बाकी अपी का बोले है बोले तो हमार औरत है बोले तो लो हमें जहल ना दे से बोले हमार औरत है बोले फिर 3 यारख बोले हम लोग संगे रहे बोले हमार औरत है ओकर माई गे नालिश कर दी छोड़िया के तो बोले हैगा अब के देर तक यारे के फरलेंग भाई ले जहल में बा और बोले अनफरक्लार इन ते इकनो पुलिस एंड मेजिस एंड फ्रो इस एंड दैट्स इज सिंस हर देर 3 देर लासी में तारीफ और बताई गई है बोले 13 वर्ष के रहा तब से हमें उसे रेलाची है और बोले हैगा बोले है द केनर खाफ ऑन द मेजिक 13-15 jaar en sommige van hen binnen de cultuur als vrouw worden beschouwd. Bole tera bari chowda pandra bole seven oké chota larka nees na dekhe ko aurat nees dekhe hai. Vooral wanneer de familie daarmee instemt dat bots echter met de nationale wet waarin iemand pas vanaf 18 jaar als volwassene wordt gezien. To pehle tulun jano bhaiya chota chota minder yaarake ladki log ke se biyah kar de wat raha to aap log isse bachaye kar rehna. जो कोई नालिश करे भैया तो झुट्टे के जइयो 15 बरी जहल में बैठ को और फ्रोइती करियो गाना गइयो ते तो अच्छा बात ना है। हम लोग के श्रीनाम देश में एरमा राम तहल सिंह आपको भी हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। तो एरमा श्रीनाम में एगो राम श्री राम स्कूल है श्री राम स्कूल है आई हैगा बोत्रो मांकी वेख लिफोर्नो में बा जैसे यहाँ बताई गई भैया। तो स्कूल में बड़ी बरैया गए भैया बड़ी बरैया गए वहाँ पे हाँ तो बरैया एगो मिलो स्कूल है ऊपर से 2 तारीख के एगो एंट एग्जामर हाँ मिलो स्कूल में और बताए गए हैगा बरैया हुआ गए ले आल रेस्ट एंड कॉन्सेंट्रेट इन एग्जामन अफलेखन बस्ता द फ्रीज द स्लाख्त ऑफर वार्डन फन द इसर कट बरैया बड़ी कटाई काटी से लड़कन के भैया द स्कूल ऑन मोखलक एंड लोकलाइजेशन एंड वार हेड बाय नेस्ट स्टार्ट गेफेस्ट द स्कूल हिप द अफदेलिंग बताए गए हैगा कम सरियात की करी से और बोले ना तो स्कूल बफिन से नाम उपमार बखराफ प्लास स्कूल ये के बगलिया में हुए कहीं पे भैया काबल बखराफ प्लास है और बोले बेरी पेन है दी दिख्त बखरूइत इस में हुखे बोमन और बोले इवन इस इन द पंक फन अख्तर से फन द स्कूल दिख्त बखरूइत द स्कूल लेडिंग दूत एन ड्रिंगिंग बरूप तो बेरी पेन है और बेरी पेन में बोले भाई बड़का बड़का जंगल परल है भूस है स्कूल के पीछे भूस है तो वही मसे कहीं बरैया रहा और लाइक के लड़कन के काट ली से तो लंटी के चाही बेरी पेनों सफा करे को इंदादात भैया और हुआ के बेरी पेनों बहुत कम थी सफाफा हुए हैं वो और हुआ के बेरी पेन में स्वेरफट भी सूते भाई सफर हमारी बहू में और पास हुई है तो भैया उसे अपन अड्डा बनाई से और लेडिंग पे जइयो सेफ बी के बेरी पेन भैया तो हुआ जो मट्टी के जहां हुए है हुआ ना देखा इतना बड़का बड़का घास भूस हो गए है लंटी जा कुछ दिन बाद कौन चीज काटे है और मायर से काटे कुछ से काटे दवाई में अंदर हो तो और नहीं तो वही समय बेरी पेर में जनावर घुस घुस बैठे वरफान में से वो भी तो अलमाल वो क्यों ने श्री नाम नहीं फरकलाई का मैं नीदरलैंड एक बरुस अंदर सोम मैं वो क्यों ने तोक दरो फरकलाई बीच हम प्रात सीता गौरी चरण गजरी आपको भी हम प्यार करते हैं कि यहाँ के बखरा फ्लास पे तो जइयो भैया तो सोचिए हम कोनो पार्क में गई ली बाटी लाते उदार एलक से सोचिए कि हम कोनो पार्क में बाटी बांगी बनाओ लेने चिकन है चारों बगल फूल बोवल है भाई दिन भर आदमी हुआ काम करे स्कोन मार्क करे है और तू जइयो भैया तो हुआ तू बेरी पेन में बैठ के एक गिलास कॉफी भी पी पइयो भैया रिस्टक से अपन फैमिली से अफस्केट ले पइयो जो उनके मट्टी परल है घूम सके भैया इतना नेचर्स बनावल है दैट इज ऑल ऑफ बखरा फ्लास इन नीदरलैंड तो बोले जो ये कम सुरीनाम नहीं फरकलाई के में नीदरलैंड ऑफ अंडरसोम मर मेंसे एक से वत द वारहेट इज और यहां पे श्री राम स्कूल के पीछे जंगल लगल है जहां इतना ढेर बड़का बड़का भूस है और बरैया जाए कि स्कूल के अंदर के लड़कन के बड़ा छेदाई खींचे दी से वारफन हुआ पे एंड एग्जाम हम मिलो स्कूल के
तो सन्नाम के जो रखे रिंग हैं वो सबसे हम बोलेला तरी तुलुन तरी चिक्कन निक्कन करियो जहाँ लड़कन है चारों बगल चाहे सफा करे अपने देश के सफाई जो नहीं अपने हाथ में है दोस्तों कोई और ना आए के करी ददमुती योरी जेल्फ खानदून रखे रिंग है पिकट ओवर मेंस मैया रखे रिंग तो जब देखियो भैया तो अपरे में लड़ते रहे है अपरे में लड़ते रहे भाई जब देखो तो लड़ते रहे है रखे रिंग में तो सोचो तो कैसे चीजों आ जाएगा कैसे चीजों आ जाएगी अब देखो दे अना में भैया का बोले हुआ स्टार्स बखरूतिंग के तो सेशन ट्विन तक के बातचीत हुए है स्टांस बखरूतिंग 2026 के वहाँ बातचीत हुए हैं और उतरे में जोगी भैया इरफान तनवी हैं भीषण बरिश से बैठल हैं और जोगी फ्रॉक स्टाइल करे हैगा वहाँ पे रखे रिंग से क्यों सुनी से कि जो खले से हुआ के आदमी लोन परवार धरे ई धरे उ धरे तो एक बारे में हम लोग के फोर्स जो ने दे आना के और अश्विन अधीन के नामों ही लगल है तो अश्विन अधीन एके बोले तो कबवाई से बस इतने में अने का बोले हैं गया दिन मतलब कि अधीन जो फोर्स इतर अश्विन अधीन है गा देना के और जोगी के मौका ना दे इसे बतियाई के बस जोगी बोले है उसे बोले तू हमें मौका ना दे ले बतियाई के बोले कि तू सोचे सो मान बोले रहा कि तू सबसे सलेक्ट देना फोर्स इतर बाटे तब तो अधीन के लगल गुस्सा भैया बस ओके जबरदस्ती बोले तू यहाँ से साल में से उड़ के तू भाग गया बोले तो कहीं यहाँ पे न उड़क तो अंतरिम कर दे इसे बोले नहीं तो माफी मांग तो अधीन यानी कि जोगी बोले कौन सी कह मांग बोले माफी तो तुके चाहिए मांगे के तो फिर यहाँ पे पार्लियामेंटारी जोगी ईबीसी में करवाने में बोली से बोले हैगा जोगी बोले हैगा मोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अधीन फॉर खान साल फलातन अब बोले फिर यहाँ पे फरवेद अधीन पार्टाइडक बाओ अब तो त्रेड ने ओपुसी ले ने बोले कि जब ओकर आदमी फिर यहाँ पे यानी कि एनडीपी के बोले हुआ पे चिल्ला है जो कुछ करे तब बोले ओके ना बोले और दो अब दसा के बोले लाल से खून प्रात अब बोले जब हम एगो बलंग रेक पूछे तब बोले बेर बेर हमें काटे है अब बोले कि जो ने हम अब स्थान पाई ग्रुफू आई क्यों हमें निकाल के बहरे करे बोले वही चीज बोले जानबूझ के करी से जोगी स्टेल दन अधीन द फोर्स इट द स्टूल सो मुतर फरलातन आल से द पार्लियामेंट नीट ओपन करेक्ट एंड ऑन पार्टाइडिक वेज कैन लेडन दार भी बना दुक्त रहे द क्वेस्टी फॉर हिम नो नीट इज अफ्कोसलोटन एक बेन नोख नी क्लार में दीसे साक तो ये बात है जोगी के हमारे जनता और अश्विन अधीन के बातचीत हुए है हमारे दोस्तों और आगे को अपना प्रोग्राम को हम लेके चलीला सिपाही लोन भैया सूरीनाम के सिपाही ना सबके विश्वास ना रह गए है विश्वास ना रह गए भैया हीरा हाँ ड्रग्स के कारोबार करे भैया तुलन जानो है संदरई पे पकड़ा रहा एसएलएम के मोतर के नीचे लुकवाए रहा कई सिपाही पकड़ा ने भैया अब यहाँ पे देख एक बात और है सिपाही पकड़ी एगो लौंडा के हाँ तो ओकर माई सुनी से कि इसी पहिया घूस लेवे है सिपहिया घूस लेवे गो बड़ी खादीर कि और लुंडवा के पकड़े रहा दृक्ष के साकोक में तब मैवा गए ले सिपहिया लगे बोले हमार बेटा हुआ के तू छोड़ दे बोले तो के हम पैसा दे बे ब्रिगेडियर फन पुलिसी एमएफ के बोले है तो ओके बोले हम तो के पैसा दे बे तो ओके बोले है 2500 यूरो

हाँ दोस्तों, तो बोले 2500 euro बोले चाहेंगा ओके देवे के ई औरतिया बिचारी अपन बिटवा के छोड़ावे खातिन 1250 euro ओके दे से ze maakte daarop 1250 euro over met de afspraak dat het resterende bedrag zou worden betaald zodra haar zoon was vrijgelaten. Afspraak raad je bij Jakim dik te komen over makrela 2500 euro wat ook het db en 2500 euro wat ook het db maar je bent wat schoen jij tep bakke i bericha derwa bent wat ke na chod op chod paise maloom na hai kahe khatin bakke u na chod pa hoi se ke ओकर ऊपर अदमीरा होई कुछ कारण ई ना छोड़ पाए से 2 तारीख जुली के और यानी कि ई इसको तुआ कुछ ना कर पाए बेटा हुआ के फॉर द रेक्टर चल गए हैख नखनेस फन देर तक दाखन इस फरलें अब मम्माई भैया बहुत तलेर खस्तर जो गए तब इसको तो बोले जे तू हमारे बेटा हुआ के ना छोड़ाए पहले भैया हीरा तो हमार 1250 इरुआ लौटाड़ और तू जाने हैं कभी कभी कोई के जेब में जब पैसा चल जाए भैया तो चपक जाए ना निकल के फिर तरक जाए और नहीं बोरो हुई के अंते चल गए वो बतिया है तो सीता गौरी चरण ना तो ई अब सिपाही वेकर कर रोके हम ना दे बे 1250 इरुआ बस ई औरत काके बगैर आनखिफ्त कर दीस अब देखो भैया चकल्लस जे आनखिफ्त करी से भाई बस ई ब्रीखा देर के ओही के कोलेका पकड़ के बंद कर दीस और 2 तारीख जुली के चल गए ओए में भैया चीजवा फॉर द रेक्टर चल गए हैं और बोले ना द अफटिंग में द ओए इज इन फॉर ही फॉरसीकरिंग स्टेल्ट जोन जहलिया में बिरिखा दिरवन दूसर कोई के बन करत रहा अब अपरे जाए के ओमा बन है भैया देखो अब तू घूस लेवे तो भाई बताए सिपाही लोन हुआ बड़ी बनमासी करे है जेके तू सोचियो सूरीनाम देश पे कि सिपाही हमार बड़का कमरात है हमार बड़का दोस्त है हमें बस करम करेगा देखो वही सब कौन कौन धंधा यहाँ पे करे है तो गीता जी भी आ गए हमारे प्रोग्राम में और यहाँ पर जुड़ गए आप देखो भैया एक औरत बहुत रोवाई रोवे भाई इतना रोवे है कि हम काम बताई ओकर आंस हम देखेला तो हमार आंख में से आंस चुईया है तो बांची धो रहा ये औरत के बिचारी के और ले गए है एक आदमी पेंशन में तू जाने तो कहाँ पेंशन वन है भैया हीरा सूरीनाम देश के बांची धोवे है तो ले गए पेंशन में भैया और ये लड़कियाँ के ले गए औरतिया के और इना है कि बहरे के औरत है या कोई रा ओकर फ्रिंदेन रा भैया कई बरिश से संगे यानी 5 यार के उस सबके रेलाक्सी रहा 5 यार रेलाक्सी रहा और ले के पेंशन में तो यौरतिया के हुआ झगड़ा भइले तो अनमिया यौरतिया के बारे में संदलन करी से भैया हम पेंशन में परमारी बहु में और बताए गए हैगा बोले हैगा इंफॉर्मेशन बताए कोपल दान इन कायो कमरा हिर कर ले रहा और बोले इन खते औरतिया रोवत गले रिसेप्शन लगे और बोले हम में तो सिपाही है स्काकल कर तो सिपाही गए है तेर प्लेक बोले हैगा अरे फिर द फरत्रोकेट कोपल उतरे में कोपलवा चल गया भैया दोनों चल गए रहा लड़ के खतेखर फ्रकला दे तेखन उपदे रे रक्षी बोले द फ्राउ आन खाफ की 5 बरी से मरे ले रक्षी बा वा द आन लेनिंग फुट में सांदलिंग ना बताई सिपाही आवत आन हमें जेना दोनों में फिन सुमत हुई गए भाई वन दोनों फिन चल गए सिपाही कोई के ना पाई से लेकिन न्यूज में तो आई गए है दोस्तों ती बड़ी बड़ी दुख के माथे ये अपन फॉर होल्डिंग विद ईमान यो होल्ड फॉर ईमान झगड़ा लड़ाई हुए है मैं इतना कि ना तो कोई के में सांदलिंग कर और कोनो कोनो कोनो चाले भैया और मैं सांदल करिए पेंशन में अब आज पूरा दुनिया जान गए हैं अब ये प्रॉब्लम में परल है दोस्तों अब तो लोन जानो है भाई निकेरी के बुड़किया क्वारंटाइन और गयाना के हाँ तो भैया दो रोहित भी आ गया है हमारे दोस्त भैया रोहित देव नारायण भी आ गया है देहा एयरफास्ट के मैनेजर है तो रोहित भैया यहां पर मेरे ख्याल से
हाँ तो दोस्तों हम और आगे को चलते हैं अपना समाचार। तो हम जाए भैया गायाना और क्वारंटाइन की ओर, हम जाए ला निकेरी के ओर भाई, निकेरी के ओर हम जाए है। तो आप लोग जानो है चांद की मात्रा बुड़की बनावे और बुड़की माता बनावे निकेरी से लेकर गायाना में, बड़ी खुशी रहा आदमी नोन कि कोई ब्रुके लेकिन रखेरी लोन जो रहा बहुत क्लाख करता कि संतोखी मांगे ब्रुकी बनावे, मांगे ब्रुकी बनावे, बोले रास्ता बनाओ ई बना कि अब इस सिमोन्स और एनडीपी रखेरी एनपीएस रखेरी जल से तहीं से बोले है ब्रुकिया चाहे दोरो बने के, बोले ब्रुकिया हम लोग के चाहे बनावे के। तो अब बात ई चीज भैले सिमोन्स गैल है और कहाँ बोले गयाना के मिनिस्टर से इरफान अली से बातचीत करी से प्रेसिडेंट इरफान अली से कि ब्रोकिया हम लोग खसामलक बना खोई गयाना से और वो काबले निकेरी निकेरी के।

चिनोआ भाई जो हम लोग के ओवी के मिनिस्टर हैगा, ओवी दया नाम का बोले है, मिनिस्टर स्टीफन स्टंग बोले है, नेशनल असेंबली में बोले बोड़किया, बोले गयाना ना, बोले फ्लोरिडा, बोले हम नून बड़ा कोई सरनाम के आदमी बनाई, बोले हम लोग गयाना से पैसा, बोले हम लोग फ्लोरिडा मांगेला अपने बनावे, ई बात बोले है चिनवा ओवे के मिनिस्टर स्टीफन सांग बोले नेशनल असेंबली में, बोले हम लोग अपने बनावे, बोले अपने तौल धरबत एकर बारे में इरफान अली जो है, इरफान अली हुआ से बमकल भाई कस के, तू जाने लावला प्रेसिडेंट ना है गया ना के इरफान अली, तो वो बमकल की ई कौन भाषा हुआ पे असेंबली में समय बतिया है, बोले बातचीत भैले है कि निकेरी के ब्रुक्की जोन है गयाना के, बोले हम लोग दोनों मिला मिल के बना कोई सरनाम और गयाना, बोले ई जौन मांगे बोले दे, बोले हमसे अस्परा के प्रेसिडेंट से सरनाम के, और वो हैगा सिमोन से, और बोले हम लोग के अस्परा के संघे बनावे हम लोग, तो बोले कि कौन ची अभी बतिया है, बोले ब्रुक्किया चाहे खसामलक बनावे हम लोग के, तो असेंबली बकेन करे बोले फलीरक हम लोग के मेडल से बहु हुई, तो यहाँ पे जनता लोन बड़ी बड़ी चीज बतावे भैया असेंबली में बोले है, और बहरे सोशल मीडिया बोले बोले कहे सरनाम अकेल मांगे ब्रोकिया बनावे, बोले बौशे ब्रोक तू लो परे जाने कितना लगल हो कितना ढेर सबर खाई पी के बनाई, बोले यू मांगे पैसा बनावे का की मांगे अकेल बनावे, वजह चिनवा आधा पैसा मजे गया ना जा आधा दे पैसा, तब तो तुस लखवाना बनाई पाइये यू बतिया है तू सलखवाना बनाई पाइये, तो ई बतिया खातिन जनता लोन बोले है कि काहे मांगे सरनाम अकेल ब्रोकिया बनावे सलाख मांगे बनावे का, तो गयाना के रखेरिंग बोले है का, बोले हम उस स्टंटमेंट हौद करेला क्वारंटाइन रिफीर के ब्रोकी गयाना से, बोले हम लोग मिल के बनावे, बोले परमारी बिफ ऑन फंगन ओवर मोगल का कुछ वे सकिंग ऑन दंस द बरिक्त सुरीनाम द बरिक फॉलीडिक सेल्फ विल फिनांशियरन एंड बसेतन, बोले उसे मांगे अपने बसेत करे अपने मांगे फिनांशियर करे, और बोले है संघ ही फिर खियाना तोर फ्रागन गलेद ओम दैट द ब्रुग tot nu toe nog steeds werd gepresenteerd als een militaire megaproject tussen beide landen. Obolehega Guyana nog altijd uitgaat een gezamenlijke ontwikkeling. Quarantainebrug is een brug die gezamenlijk wordt besproken als een gezamenlijke project door de regering Guyana en Suriname, stelde Ali. तो एक बारे में जैसे जैसे रही हम बतावे, बोले है जेनिफर सिमोन ही वखरी पंदर सुरिनाम बेसक वास डील फॉर एन बस्तांद यूरिडिस कादर आफ्टर ऑन द टर्बल गयाना सेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फॉरबरेनिंग आल हाथ अफ्रॉन्ट, और सुरिनाम में कहा भैया एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक से हुए है, वहां पे एक गो कम करते हैं एक गो आदमी डेवलप तीन तीन गो सलारस है, कितना आदमी बैतलांत में है और ओकर सलारस एक भाव है, और वहां एडमिनिस्ट्रेशन ना जाने है कि रमिया कहां है काम पे आवे कि ना आवे है, तो एक बारे में और कहा बोले है मिनिस्टर फंबेन लांस जाक कहेगा, और मनीरस फंबे बोले है कि तो कह चुगली करे के, बोले चुगली वाला चुगल खोर वन के बोले है रोहित चुगुल खरवन के, बोले हमें तू बैल करके बताइए कि कौन अनमियन दुई गो तीन गो पावे है का, बोले है सलारस, बोले जो ने हम ओके पकड़ी, बोले जो ने हम ओके पकड़ी, बोले हमें बताइए गो दानो नीमल लाइस धरी से टेलीफोन नंबर, बोले चुगुल खरवन, बोले बताइए मत तू जाने भैया चुगुल खोर बाड़ा ढेर दुनिया में ना अपने खाइन दूसरे के खाइन दी बाकी देश के चूसे है भैया, तो बोले बताइयो तो ऐसे बतिया है, अब को ब्रुकिया जो है 3.1 किलोमीटर के ब्रुकी रे भैया छोटा ब्रुकी ना है, अति से ब्रुक फन 3.1 किलोमीटर मुड फॉर आउट द फियर फॉर बीइंग इट इज सोद्रेन एंड सुरीनाम इन मोलिसोन क्रीक इन गयाना फॉर फंगन, यहां बताए गए है प्रोजेक्ट वर्क हसीन अल बलानाई के फॉर हैंडल टूरिज्म रुखियाल रीजनल फॉरबिंडिंग टिसन फ्रांस गुयाना एंड ब्राजील के बारे में भी हैगा दोस्तों, तो हम और आगे को अपना प्रोग्राम ओली ब्रुकिया के बारे में बता दे, वन केरी के भी हमारा प्रोग्राम सुने हैं, और आप लोग को जरूर जानना चाहिए कि प्लानिंग हुआ कैसे एक सिपाही भैया चोर के ना गए है दागे, इरमा राम तहल सिंह आपको भी स्वागत करते हैं फिर से एक बार, हम यानी कि हमें फेसबुक हुआ निकाल के फेंक दे रहा दोस्तों माइक बैनर अलवेर, तो
सिपाही भैया ना गए ले चोर के दागे अपरे के दाग ले। भैया सुरनाम के सिपाही के बात बतियाला हमार जनता। बोले जानी ये मुदीन में से नहीं लख है, हम नु सब के ना इत लख करी भैया जैसे समाचार तो बताइला। तो बताओ गए 26 तारीख नवंबर के एगो सिपाही भाई अपने पिस्तौल से अपरे आप के दाग ले से फरकलाद दथा सुन दौड़ नारकोटिका ब्रिगेड वास ड्रग्स इंसर्बसी था। सिपहिया बोले ओकर बेटवा के नारकोटिका ब्रिगेड जो ड्रग्स के बारे में ओकर बेटवा पकड़ ली से। बोले डो फ्राउ सोफिया फिया है बट फॉर नोमन के ओकर बेटवा और फ्रेय फुटन सोदन वार्डन इन क्रिस्टल आसे 2500 यूरो अन पॉलिसी बताल दे ना। ते ई है एकवा भैया का बोले है पैसवा वाला लेकिन जो सिपहिया अपने आपके दाग से कह है इसल खवेल तरा भाई और जाए के दाग ली से अपने के। तो दोस्तों और आगे को हम जाना चाहते हैं और ये बात है आदमी बड़ा जोर कैसीनो जाए सुरीनाम में भाई। हाँ कैसीनो में भैया तो एक आदमी गए ले कैसीनो में बड़ी ढेर पैसा लेके भैया एक ताज पैसा लेके गए ले कैसीनो में। और जो गए ले कैसीनो में उतना ढेर पैसा लेके बस कोनो कर तस्वे मार दी भैया तासन में खरोत खल बराखन खस्तूलन फन कलांतन इन द कैसीनो। अरे कैमरा है मां भाई कैमरा में चाहिए पे को दरियन दर तक यार के चिनुआ बीते हुए हफ्ता में बोले ओकर तास जेमा हजारन अमेरिकन डॉलर रहा। बोले कैसीनो एगो दो मने स्ट्रैट में बोले हुआ से सबन चुरा ले से बोले जेमा देर तक दैसन डॉलर रहा 10,000 एसआर दे रहा मोबाइल टेलीफोन रहा। बोले हम खाली तसवा छोड़ के बोले हम गली टॉयलेट। अरे भैया उतना पैसा छोड़ के तो के लगल हैगा टॉयलेट तो तू अपन तास छोड़िए तो उ तसवा जे छोड़ी बस दूसर कोई मार दे इसे चिनवा तू गधा बाटे। कैमरा बेल ब्लैक दत मान द तास ऑफ से स्कूट हाथ एंड दे इज अ तेजस दी लाम रुलेट ऑफ द ग्राउंड लीड फॉलन एन अंडर बसुक द अख्तर हेमस्टोन हिव द तास मेस इन फुट ना से टू गट्रोकन एंड इज एर वervolgens mee vandoor gegaan. Familieleden van de man die eveneens in het casino aanwezig waren hebben niets gemerkt van de verdwijning. De politiebureau centrum ik er waren met khojmin kare de chino wa kal bane raha aur bole palwar na dekh pai sab to khali gutti taake hua bhaiya to hiya batayi gayi hai dar ba bhai 5000 sd bait gemaakt batawega afgelopen manger ke aangifte bhil hai dit keer werd een klant in de casino een 5000 sd bait gemaakt. ओक दिन अंडरसुक इस हंड्रेड से दो ही राइन चोरी हुई चुका भैया। बीते हफ्ता में हुआ पे 50,000 ऐसा दे भी चोरी हुई गया रहा। तो ये है हमारे भारत जनता। हम सोचे आप लोग को एक गीत हम सुना दी। अबे एक को गाना ना सुनाई ली है और कौन गाना सुनाए वो चटनी हम जाल सुना

दोस्तों ये गीत बहुत लंबा है तो हमें तो रोकना पड़ेगा अभी साइड और आगे को हम फिर से चला देंगे। दोस्तों हम चलते हैं और आगे को अपना समाचार को लेके, यानी कि समाचार काफी है भैया हीरा, आपको हम स्वागत फिर से एक बार करते हैं। और तो अब देखो हुआ है क्या भैया, सोमो हार्जो का बेटवा जाने पॉल सोमो हार्जो भैया बरोन तो रहा पेयल फ्राक्सी फोर से तो रहा फ्राक्सी लाइदर रहा, तो ये आदमी फिर यहाँ पे के ग्रुप में से फिर से एनडीपी में चल आए, अब फिर यहाँ पे में ब्रंसवाइक से झगड़ा भैले, बड़ी बड़ी बातचीत भैले, बड़का बड़का बात बोले, अब एक के कहा बोले स्टार्स मुश्किल हिंग में मिलल है मुतर बेरे ओवेम खान, अब बरोन तो कहा करे भैया अंदाज बहुत रख करे हैं एगो लेस लेफर करे से दे आना के जेमा 200 नाम है स्टिकटिंग के, और बोली से कि जेमा इन दिन द नेशनल बोले पेयर बवेर द एयर द दैट बस्ट्यूस इन होप फॉर सीस लीडर फन ऑफ हैप्पी दिस इज द फोर रखिए प्रयोग द फिया स्टिकटिंग इन दसन को जगह ले से, और बोले खाली 1000 डाला भरी से, बोले अब कौन ची हुए ना न्यूनजीर दे है सेन एर्डर आइस्प्राक इंस्टेल दैट है द ग्रॉन कॉन्फ्रेंसी दो नंबर पाले पार्टी वेर गब्रेक ऑन विट वासन टू फैसिलिटेटन फॉल्स द पॉलिटिकस हाथ है तो मैं इस तो दोषी एंड साल है स्टाफ फॉर स्टाफ बोलेगा सब तो के बतावे, और एकर बारे में जब मिनिस्टर से फान खरोन बलाइट के पूछी से तब बोले अब बे कुछ ना हैगा जो नुसब के भवाई से एक ब्लाइफ एयरबेड खरोन को फैसी दूर पढ़ते वेर खबर एक फिट वासन फान फैसिलिटेट, और बोले है एकर बारे में फे या पे फ्रक्सी लेडर आशीष कुमार गया अधीन बोले हैं, बोले ये बहुत एरस्ट का साक है जो समो हार्जो आन हाल दर खरोन को फैसी दूर बपाल पढ़ते ही वेर खबर एक फॉर द वेट वासन वाले दो इलेक बोले फे या पे के आदमी खाली जगह ले से एक बारे में दे एना फोर्सिटर अश्विन अनभीन बोले क्वालक दत है सोन इस प्राक में से हमर ही फलातन पसीरन, अब बोले इतना बड़का मुश्किल लग करी कि या पे नोन ऐसे करी से, अब बोले अश्विन अनभीन बोले कुछ ना बोली से बाकी जोगी एगो चीज पूछी से रुके निकाल के बाहर कर दी से एंड दैट फिनिश ऑन इलेक में से एक बारे मिनिस्ट्री स्टैनली सुरोपावीर जो खरोन खरोन बलाई फन बॉस बहिर के है वो मेरकर करे ऑफ द स्टिकटिंग वार ओवर समो हार जो है थी नोक ऑन द सोख मुतन वार्डन बोले बे चाहिए सब ऑन द सुख होवे के, अब बोले लाइक के एज लेजर दिस ओही के आदमी अन खसीन है ऑफ कॉम्प्लेक्स साकन खान सो से ने खफाला वार बे कॉन्फेर्सी heeft plaatsgevonden terwijl er rechtszaken gaande waren. Dus al zijn dit al afgerond, er kleven nog steeds problemen. Toen je baant hij zomaar hard ook een Bronto, bhaiya, Bronto zit onder vier mensen, want hij, de lach van hem is er niet meer. Want hij moet bij de OM gaan, ook er op een zakje, bhaiya, kuketra paisa, fraudeur kadisega. Dus dat zijn de zaken. Deko, bhaiya, Tulunjano, Suriname, je stroomke paisa na bharie, de kaarten met kelwaarda kare, bhaiya, aike काट दे बाकी द ग्रोस्ट वन बतालर इज द ओवर हेट इन सुरीनाम जो स्ट्रोम के पैसा ना भरे आशा जो स्ट्रोम के पैसा ना भरे आई के काट ना देवे है बोले हम लोग काट स्ट्रोम है ना पे बाकी यहां बतावे है का सबसे बड़का वन बला वन बतालर जो ने लांटी है जो ने ईबीएस के स्ट्रोम खबर है के कर पैसे ना भरे सेफ कॉमा फेफ फिर तक मिलियन एसआरडी अखतर स्टंट हैगा ओवर हेट ईबीएस के भाई इज द ग्रोस्ट वन बला वन बतालर, और बोले एकर बारे में अन मिनिस्टर अन बोले है इंटरिम फन नतुलक हिलब्रोनन बताई गई है बोले है गांड वेट स्टार्स बखरूटिंग 2026 में कर बारे में वित्तलाई से कि एबीएस इन मेडल 745 मिलियन बोले है ना पैसे फॉल्स हीर बद्राग द अक्सर स्थान बे द एबीएस, और बोले हीर बनाद्रक दार ओवरहेड alles in de werk moet stellen om de aanzienlijke betalingsachterstand weg te werken. Zij deed daarbij ook een oproep aan haar collega minister van de Financiën de Plichting, de Oesap Bolehe Otra Paisa, Bolena Paisa, EBS
एस भैया और जो तू वहां पे 10 रुपया ना भरिए तो आई के ब्रॉन पे आई गए लेके खट से काट दे भैया से इखल कर दे और ऑफर है कि सिर्फ 100 मिलियन है ओके कोई कटवे ना करे है तो ये बात है। तो हमारा बहन मुन नारायण भी आ गया है और वो है पथवानी का से दोस्तों, तो आपको भी हम स्वागत करते हैं। हम चलते हैं अपना और प्रोग्राम के बारे में। तो यहां बताए गए हैं दोस्तों, यहां बताए गए तो लोग जानो है फिनिसवेला में मदुरा के जनवरी में 3 तारीख जनवरी का अमेरिका वही घर में मचे पकड़ ले गया रहा तो लोग जानो है। और फिनिसवेला में इतना काबल बमंडल चल रहेगा और बेफेंग रहेगा, बहुत ढेर आदमी मर गए है, हेल्प खोजे है और हम मदुरा खाली मांगे वहां पे निकले। अब मदुरे के आदमी फिनिसवेला के मदुरा के ऊपर शोल कर सेगा कि 5 आदमी के जान से मरवा दे इसे फिनिसवेला में। मदुरा जब यहाँ पे रहा अब ओकर ऊपर रक्षाक बोली सेगा, बोले अब तू पैसा भर एक तो मदुरा प्रॉब्लम में अपरे है रक्षाक में और ओके और वही के देश के आदमी जाए के 5 गो थोप दे इसे। बोले हैगा 5 गो लंडन के ट्वीट जैसे सेफन 3 में ट्वीट जैसे 21 में आई का बोले मदुरा और द्राख दे इसेगा एक स्पेशल एक्शन फोर्सेस के कि 5 लंडन के डाक के माढ़ा इसे एक्सक्यूजर करवा इसेगा। यानी कि मदुरा अब एक बाग में सब साख लड़े हैं मदुरा तो और बड़का प्रॉब्लम में पड़ जाए भैया। और बोले मदुरा एंड फ्लोरस ऑफ खपाकिंग काराकास वो करोड़ के पकड़े रहा 3 तारीख जनवरी में

make sure anybody getting married, you know. तो यही चून से हम अपना प्रोग्राम को खत्म करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार। इधर इन बाय बाय स्वाई स्वाई धर्मेन इधर इन बाय बाय।

और हद से ज्यादा तुम किसी से प्यार मत करना दोस्तों, कारण कि जब ज्यादा प्यार करते हैं और प्यार में कभी टकराव जो हो जाता है तो बस आंसू ही बहते हैं, उसके बाद हम आउट चलते हैं और खबरों का हार्ट सॉन्ग।

बस याद ही याद रह जाती है। और आज हम आप लोग को अनहील यूरमैन से हम आप लोग को दर्द भरी गीत को सुनाएंगे, फॉर खबरों का हार्ट सॉन्ग। अगर आपका दिल टूट गया है, प्यार में धोखा को पाया है, तो ये गीत आपको आप सबके लिए है। हील फिल्मैन से सैन खसकाईद, प्यार में धोखा पाए से आप रेडियो के करीब रहना और इस गीत को हमारा प्रोग्राम को सुनिए। और अगर हो सके तब आपकी आँख में या आंसू निकल आए तो उसको पोछ देना दोस्तों। तो हम चलते हैं। जो कोई किसी से बेवफा किया है तो बेवफाई भी हुआ है, बहुत बेवफा लोग करते हैं, उस सब के लिए इस गीत है।

प्यार का दोस्तों दर्द भरी खबरों का हर सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाए हैं। किसी के दिल आपने तोड़ दिया है या आपके दिल टूट गया है तो आपको यहाँ पर हम जख्म देते हैं अपने गीतों से।

वफाना राज आई तुझे हर जाई खबरों का हार्ट सॉन्ग। आपके दिल अगर टूट गया है या टूटने वाला है या चोट लग गया है तो आपकी आंखों में हम आंसू नहीं प्यार देखना चाहते हैं। इस सॉन्ग से आपके जो दर्द है उसको हम भरते हैं, तो आओ मिलकर ये इस गीत को सुना जाए।

दर्द भरी खबरों को हर सॉन्ग्स किसकी किसी के, अगर जो आपके यानी कि दिल टूट गया है या किसी ने तोड़ दिया है तो मत घबराना, जो टूट जाता है वो एक दिन जुड़ भी जाता है। आपको हम बताते हैं कि तड़प तड़प के इस दिल को लोग याद करते हैं और इस दिल से पुकारते हैं, लेकिन जब तक उसकी समय नहीं आएंगे वो दिल नहीं जुड़ते हैं। तो एक और गीत की ओर चला जाए।

नंदिनी नंदिनी नंदिनी समीर चाह रहा है। पापा नहीं माने, वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। इतनी इजाजत दी है कि तुम उसे जाते वक्त सिर्फ एक नजर देख सको। उठो नंदिनी उठो, समीर हमेशा के लिए जा रहा है, जाकर देखा उसे, फिर शायद जिंदगी में तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। जाओ नंदिनी।

मोहब्बत में। और ये सुपर हिट सॉन्ग है दोस्तों, और उसके बाद तो हम चलते हैं और दर्द भरी गीतों का प्रोग्राम आज हम आज चलाते हैं।

आते हैं तो रोना पड़ जाते हैं। दोस्तों ये दर्द भरी सॉन्ग है जिसका दिल टूट गया है, अगर प्यार में धोखा भी मिल चुका है तो सबके लिए ये गीत है।

और आप नरासी खुदा और खैर करे। और इस गीत को मांग किया है सुरेश हरि प्रसाद है नकर ने। मेंस अल्स यू ओक विल बेले om een nummer aan te vragen, kunt u bellen op 070-213-6598. Ben ik op dit moment bereikbaar? Ik had gehoord, ik ga je uit de 20 minuten hoge jaren aan te bedenken mee. Toen hem giet ko chalate hier, Rosa Kelie.

गेम मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा, ना मुझे ऐसे मस्का लगा। रही ना किसी काम धाम की, जब से लड़की को चस्का लगा।

और लड़की खराब करी दी पायल। आज दोस्तों कुछ रिमिक्स हॉट सॉन्ग आपको सुनाएंगे हर बार।

और दोस्तों ओनली रीमिक सॉन्ग फंदाख है और आज हम कुछ हॉट सॉन्ग के मूड में हैं। उसके बाद हम चलते हैं मेघा मौसिक शुकिन विशाल जिपर जिपर जिपर एंड जिपर सॉन्ग।

आओ जिसको बोलो ना हमारे यारो, आज जॉनी कुछ रिमेक हॉट सॉन्ग के ओर में है, उसके बाद तो भी समुंदर के बाद में, और क्या हम आपको सुनाएंगे, बस सुनते रहो।

0: रांध को आऊंगा मैं, और रांध के आऊंगी तो क्या करेंगे?
1: मुझसे शादी करो।
0: ओ शादी करोगे ना?

और यही है क्या, यही है आरजू और यही है और आरजू हमारी यारो।

और दोस्तों, जैसे हमने आपको कहा है कि आज हम आप कुछ सॉन्ग सुनाएंगे, मोहम्मद अजीज का सॉन्ग और एक बगल उसके बाद, और वो है टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू और अलका यांगनिक का सॉन्ग हम आपको सुनाएंगे।

और कोई तलाश है जिंदगी तो कोई साथी चाहिए। अब हम चलते हैं कुमार शानू के बांट में एक बार फिर मोहम्मद अजीज की ओर।

तो मोहम्मद अजीज ने कहा कि ये गम ना होता तो वो शराब कभी नहीं पीता। तो उसके बाद हम चलते हैं टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू एंड अलका याग्निक।

और दोस्तों अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज का ये सॉन्ग थे। उसके बाद हम चलते हैं एक बार और आका यागनी कुमार शानू के उरे और हमारे यारो तो हम चलते हैं एवरी ग्रीन कुमार जानू एंड अलका यंगनी।

और बरसात में भी आग लग जाती है दोस्तों, तो ये सब तो प्यार की बातें होती है यार। तख्तक में जो सदाबहार जोंग है और वो है कुमार शानू अलका यागनी का एक गीत आपको हम सुनाते हैं। और दिलबर के बाद में हम क्या आते हैं,

तो हमारे प्रिय प्रिय सज्जनों, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ हमारे सुरिनाम देश का एक जबरदस्त गायक, उस्तादों का उस्ताद, बैठक गाना का महा महागुरु और इंटरनेशनल कलाकार, द मैन विद द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस फ्रॉम द बैठक गाना डायनेस्टी फ्रॉम सुरिनाम, उस्तादों का उस्ताद मैस्त्रो रॉबी उदित राम।

हमारे सूरीनाम देश का जिस पे हमें नाम से गर्व है, उस्ताद का उस्ताद श्री रॉबी उदित राम जी। अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को एक नौजवान कलाकार हमारे सूरीनाम देश का, आदित्य राम सुकूर जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर मजेदार सॉन्ग आप सुनेंगे, स्वीट मेलोडीज फॉर एवर 2024 से निकला हूँ और बिल्कुल नया सॉन्ग है, कुछ दो हफ्ते पहले रिलीज किया गया है, तो मिलकर सुनते हैं। मैं फोकल इस यो फोकल मोर चिड़ैया तोर चिड़ैया इक्के में मिला दे मजेदार सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम, एंजॉय।

0: क्या बात है, शाबाश शाबाश मंदिर, बिल्कुल नया सॉन्ग है, मजेदार सॉन्ग। खसोंगदोर आदित्य राम सुकुल जी, नौजवान कलाकार हमारे सूरीनाम देश का। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है यार, साप्ताहिक प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सरनामी संगीत। एक और जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडिस का मैस्त्रो दीपक कन्हई जी को लाते हैं प्रोग्राम में, और वो सुनाते हैं कुछ कि भाग बोई जा जा जा रे।
1: तुम हो हम है, न तुम कम हो न हम कम है।

एकदम शाबाश शाबाश नौजवान कलाकार हमारे हॉलैंडीज का जबरदस्त गायक डिग्रेट मैस्त्रो दीपक कन्हई जी विथ इस म्यूजिक फरमासी रिश्ता। अगला बयान के तरफ बढ़ते हैं को जबरदस्त गाने वाली हमारे हॉलैंडीज का मिस काजल भग्गू जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं आप सभी को बोलावे रसिया एंजॉय द सरनामी संगीत।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया और सुनाने वाली थी इस जमाने के मशहूर गाने वाली हॉलैंडीज का मिस काजल भग्गू। अगला बयान एक मजेदार सॉन्ग है और सुनाने वाले हैं हमारा यारों का यार एक ही गांव के हम लोग हैं हैस फन मखेंता एंड एक बैन फन डाम कांती यू वेट इन द ब्यूट फन मुकेश बार एंड कैनल कार है लंग उस्ताद रॉबी गोगार के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुने कुछ झगड़ा के बारे में फेत फेती बाया स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम
1: यहाँ का सुनिला घर में फिर

शाबाश शाबाश मशहूर गाने वाली सुरीनाम दे सोलंडिस का द ग्रेट चटनी क्वीन फ्रॉम हॉलैंड उस्ताद इन बिजानवती चैतू जी। अगला बयान एक और अति सुंदर सॉन्ग है, इस चटनी सॉन्ग और सुनाने वाला है आप सभी को मशहूर गायक हमारे हॉलैंडिस का स्टीफन रघुनाथ जी के ब्यूटीफुल आवाज में दोनों नैना।

शाबाश शाबाश, जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडीज का स्टीफन रघुनाथ जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग आप श्रोताओं ने सुना। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो साप्ताहिक प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सरनामी संगीत का एक और जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडीज का उस्तादों का उस्ताद द लायन ऑफ बैठक गाना, महान फनकार जिस पे हमें नाज है गर्व है, देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी का ये सुपरहिट सॉन्ग नहीं चाहिए रंग महल।

अवश्य महान गायक है हमारे हॉलैंडीज का, द लायन ऑफ बैठक गाना, द किंग ऑफ बैठक गाना, जो बोलो इस पे फिट होता है ये महान कलाकार के ऊपर, जो इस वक्त पूरी दुनिया में अपने आवाज से हलचल मचा रहा है। और हम लोगों का ये जो सरनामी संगीत है, खास करके बैठक गाना का, जोर तोर से वर्ल्ड वाइड प्रमोट कर रहा है, जिसपे हमें नाज है, गर्व है। एन अतुलिक वेंसेव मैथसन आल हेल फील सक्सेस भाई देवेंद्र सिंह जी को voor zijn optredens en natuurlijk voor het promoten van ons bijzonder muziek. Gaas kerke, bijtegana sangeet ka.

हमारे प्रिय श्रोताओं, यही तक था आज का हमारे पहला अध्याय सरनामी संगीत का, जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, जहां पर भी हो, जिस हाल में हो। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार, दुलार, प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। अब हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ दिन प्रकट हो। मैं थे लॉइस्टर प्रेसीर के साथ ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो कहीं।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है इंटरनेट के लहर द्वारा फाउन FM.NL पर और ये कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है देन हांग शहर से। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिलक वेरिक्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंत सो लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स। तो जो भी रेडियो का काम हो देन कन्फा हो हिंदुस्तानी रेडियो खास फरमाई से हो जरूरी खबरें इश्तिहारे या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापार के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर या तो आप एक इवेंट और खनिशात और हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हो उसके बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और या तो अपने व्यापारी के बारे में कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी जो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो तो हो सकता है ना कि चमत्कार पे चमत्कार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो खास फरमाई से हो इश्तिहारे कॉमर्शियल हो बड़े प्यार और दुलार और शान शोहरत के साथ हम लोग अपमान पर बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग का ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से यही कहते आ रहा हूँ यारो कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को दनहाक भर में नहीं मिलेगा यारो। आप जरा आजमा कर तो देख सभी जानकारी बेल टेरेंस कांतोर यूर फन मानदाग तो फ्राइडाग फन नेक यूर मॉर्गन्स तो फाइव यूर मेदाग्स दफ्तर का तार का नंबर 07-362-2047 या तो स्टूडियो का तार का नंबर 07-362-2077 पर आप तार करके इसके बारे में सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। तो जो भी रेडियो का काम हो देन कन्फर्म हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रेक्लाम बनाते रहना यार चर्चा करते रहना और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तह दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रो को भी बनाए आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तैयार करें दफ्तर में 07-362-2047 पर। तो आप भी हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। एक ही दम लेकर चलते हैं आप श्रोताओं को प्रोग्राम की तरफ और जरा दिल थाम के बैठिए क्योंकि एक जबरदस्त नगमा आप सुनने वाले हैं। बिल्कुल नया सॉन्ग है हमारे महान गायक हॉलैंडेस का जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ और फन ऑफ नहीं द्रियन तख्त से म्यूजिक फरमाशी द स्ट्रेंजर्स आजकल द स्ट्रेंजर्स ऑर्केस्ट्रा में गा रहा है और अपने आवाज से दुनिया पूरी हॉलैंड भर को अपने दिल में बसा लिया है। महान गायक बॉबी याकोब का बिल्कुल नया सॉन्ग चलो आज चलते हैं हम। कंपोज एंड अरेंज बाय इरफान सबीर एंड अशोक अयोध्या। ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम न्यू न्यू

लेने वाला नगमा, चलो आज चलते हैं हम। मैस्त्रो बॉबी याकोब जी का बिल्कुल नया सॉन्ग, कंपोज एंड अरेंज बाय इरफान सबीर एंड मैस्त्रो अशोक अयोध्या, बिल्कुल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के लिए ये अति सुंदर बयान ये महान गायक बॉबी याकोब जी।

अगला बयान सुनाने को जा रही है आप सभी को एक और जबरदस्त गाने वाली हमारे हॉलैंडीज का फ्रॉम रोटरडम द चटनी क्वीन फ्रॉम द 90s अश्नी माता दिन जी का ब्यूटीफुल नया सॉन्ग चलत मुसाफिर

Shabashabashe, the chutney queen from the 90s from Rotterdam, Holland. Ashni Mata Dinjika, beautiful song. New release kya hua ye, ati sundar bayan. Gaure, beautiful song rakh chuka hoon, yaro player mein aap sunta hoon ke Shiva mein, aur sunane ko aa rahe hai aap sabhi ko. नौजवान कलाकार हमारे सुरीनाम देश हॉलैंडीज का सुजल उमराव जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे आपके प्यार में.

वंडरफुल सॉन्ग सुनाया आप सभी को, नौजवान कलाकार हमारे हॉलैंड देश से, सुरीनाम देश का, द ग्रेट सुजल उमरो, म्यूजिक फॉर्मासी फ्री स्टाइल। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है जोर तोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश का, मिड ब्यूटीफुल वॉइस फ्रॉम द म्यूजिक फॉर्मेसी क्लास एक्स, मैस्ट्रो रायन नन्नन जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे पहले भी मैं।

और गायक डिग्रेट रायन नन्नन जी के ब्यूटीफुल आवाज में थी सुंदर बयान, आप सुना पहले भी मैं, फ्रॉम द म्यूजिक फॉर मासी क्लास एक्स। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं, एक और ब्यूटीफुल मैशअप आप सुनेंगे फ्रॉम द 70s, और वो सुनाने को जा रहे है जबरदस्त गायक इस जमाने का द ग्रेट प्रभात पंचू जी के ब्यूटीफुल आवाज में। एंजॉय कीजिए, म्यूजिक प्रोड्यूस्ड एंड रीअरेंज्ड बाय मैस्ट्रो सेलेक्टा।

de 70 mashup, हिंदी मैशअप सुनाया आप सभी को. इस जमाने का जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडीज का प्रभात पंचू के ब्यूटीफुल आवाज में ये थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने श्रवण किए. तो यारो कुछ शेर शायरी हो जाए ना भी हमारे शेर के चाहने वालों के लिए. अर्ज किया है भाई भूपेंद्र जी कुछ ताजे ताजे भेज भेज के, यानी लिख लिख कर भेज भेज देते हैं, जिसका मैं बहुत ही आभारी हूं यार. तो कहा है भाई भूपेंद्र जी ने कि एहसास बदल जाते हैं, एहसास बदल जाते हैं बस और कुछ नहीं, वरना वरना मोहब्बत और नफरत एक ही दिल से होती है यारो. गुजरे ये जीवन संग तेरे इस दिल का ये अरमान है, गुजरे ये जीवन संग तेरे इस दिल का तो यही अरमान है. आजा सिखा दूं, आजा सिखा दूं प्यार तुझको, क्योंकि तू भोली है और नादान भी है. हम ही पागल थे जो दिल का खेल तेरे साथ खेल बैठे. तेरी आदत तो बचपन से खिलौने तोड़ने की है, और ये बात मैं भूल गया था. इतना ना याद आया करो कि रात भर सो ना सकूं. सुबह को लाल लाल आंखों का हिसाब पूछते हैं लोग. कुछ खास नहीं बस इतनी सी मोहब्बत है मेरी, कुछ खास नहीं बस इतनी सी मोहब्बत है मेरी, हर रात का आखिरी ख्याल हर सुबह के पहले सोच हो तुम. कहीं लग ना जाए मेरे गम को किसी की नजर, कहीं लग ना जाए मेरे गम को किसी की नजर, इसलिए अब गम को मैं दिल में छुपा के रखता हूं. ये था कुछ शेर, से आगे के प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कुछ और सुनाने को. बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ. एक ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सुनेंगे, प्यार तो एक दिन होना था, कॉफर्ड बाय डेमियन आर्म्ड एशली.

Beautiful song, Pyar To Ik Din Hona Tha, covered by Damien and Ashley. अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं आप सभी को, और इस बार मिस्टर के फ्रॉम हॉलैंड किरण केदार का ये ब्यूटीफुल के मैशअप 3.

शाबाश शाबाश शाबाश रैंडी, जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का, आयतन हेल बिशकाल फैमिली दबई ताली से, ब्यूटीफुल सॉन्ग। अगला बयान और साथ ही साथ ये आखिरी बयान है आज के इस हमारे सरनामी संगीत का प्रोग्राम का, और सुनने को जा रहे हैं एक और जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश हॉलैंडेज का, उस्ताद राजेश शिवनंदन जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे ओकन मैशिप, सेंट मैशिप 3।

Beautiful song, a great mashup by Rajesh Sivanandan, जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंड देश और सूरीनाम देश का मैशअप द्री प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज बाय मास्टरो सेलेक्टा। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, यही तक था आज का हमारे सरनामी संगीत का प्रोग्राम जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना मत।

0: तो हमारी प्रिय दोस्तों और खास करके भैया कुमार घिराओ तो चला, और आज के कार्यक्रम में जो है इस बार ये नंबर हम पेश कर रहा हूँ मैंने आपके लिए।
1: दिल ने ये मान लिया है तो ही न चाहते हुए

प्यार कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, वो चल के तो नहीं आता है। कैसे प्यार होता है दोस्तों, सोचो, जानो

कब तक चुप रहोगे? फिल्म का नाम है और इसका गीत का नाम नंबर जो है खास करके गीत का बोल मितवा भूल न जाना।

क्यों नहीं, आप फाहो हिंदुस्तानी रेडियो पे हमारे सुनने वाले हो। यह दर्द भरा नंबर

0: तो हमारे दोस्तों और हमारी फाहुन के सुनने वालों, जरा से इसे गौर से सुन लेना, क्योंकि मैं शेर शायरी आपके साथ मिलके हमेशा ही करता हूँ। टी, थोड़ा सा वक्त तुम्हारा मांगता हूँ, थोड़ा सा वक्त तुम्हारा मांगता हूँ, और इसे ज्यादा मैं क्या मांगता हूँ। कुछ प्यार भरे लम्हे साथ बिताओ तुम, न मैं जरा जहान मानता हूँ, न मैं सारा जहान मानता हूँ, मेरी खुद की अहमियत नहीं मेरी निगाहों में, तुम अपनी नज़रों में खुदा मानता हूँ, तुमको अपनी नज़रों में खुदा मानता हूँ, तुम्हारे नाम से कोई कुछ भी सोचे हाँ, मैं तुम्हारे नाम को वफा मानता हूँ। और आखिरी में चलकर यूं ही ये खास नंबर जो है चल के सुनते हैं।
1: तुम्हारी मोहब्बत में हम तुम्हारे जर खरीद गुलाम हो चुके हैं, हर जगह तो

आपको अगर इतराज न हो तो एक और कहना चाहता हूं कि उतना हसीन फिर कोई लम्हा नहीं मिला, उतना हसीन फिर कोई लम्हा नहीं मिला, तेरे जाने के बाद कोई भी तुझ सा नहीं मिला। सोचा करूं मैं एक दिन खुद से ही गुफ्तगू, लेकिन कभी मैं खुद को तन्हा नहीं मिला। हमारी प्रिय दोस्तों,

अनुराधा पौदवल, मोहम्मद असीफ, साहेब असीस मोहम्मद। ये दोनों महान कलाकारों से आप प्रोग्राम में ये खास नंबर सुन रहे हो।

हम और हम आपके साथ है, साथ दे रहे हो ना, खुशी की बात है कि अच्छी सूरत को संवारने की जरूरत क्या है, अच्छी सूरत को संवारने की जरूरत क्या है। सादगी में भी, सादगी में भी कयामत की अदा होती है दोस्तों। आप इसे सहमत हो बता सकते हो, यूं ही जरूर से, और बताना हो तो फाहन से जरूर तारक नंबर 2 24 24 24 24। और अभी मैं आपका सेवक श्याम पूरन आपके साथ दे रहा हूँ।

सुकून सा मिलता है जब आप साथ देते हो हमारी प्रिय दोस्तों कि उड़ जाते हैं बादल भी जो कभी बरसना चाहते थे, उड़ जाते हैं बादल भी जो कभी बरसना चाहते थे। ये हवाएं और दुनिया दारी दोस्तों, यह हवाएं दुनियादारी की अच्छे अच्छे बिगाड़ देती है दोस्तों। और शेर शायरी के साथ आप जो हो तो एक नगमा यहाँ से मैंने पेश किया रहा हूँ और आप जो तार करके मांग किए हो तो यूं ही आप ही के लिए और बहुत प्यार के साथ चल के सुनते हैं गुजारिश पर। एक फोक सॉन्ग है दोस्तों।

0: मालिनी अवस्थी दोस्तों
1: जाने।
0: साथ दे रही हो अजनबी, खुशी की बात है।

और ब्याह के बाद गौना भी हो गया, लेकिन लोकगीतों की एक खासियत है, लोकगीत वही कहते हैं जो आम आदमी सोचता है, जो भोले आदमी सोचते हैं।

आपको क्या कहना है इस कलाकार को दोस्तों, कि तुझे बार बार देखकर एहसास हुआ, तुझे बार बार देखकर एहसास हुआ, इश्क पहले भी हुआ है और पर तुझसे कुछ खास हुआ है। दोस्तों कार्यक्रम फाहुन के आप सुन रहे हो, हिट स्टेशन द म्यूजिक स्टेशन 957 3547.

तो हमारी प्रिय दोस्तों, बेस्ट लॉयसरार से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर जहाँ पे आप चुने तो आप ही के लिए ये सब कुछ प्रस्तुत होता है कि सूखे पत्तों की तरह बिखरे हुए थे हम, सूखे पत्तों की तरह बिखरे हुए थे हम और किसी ने समेटा भी, किसी ने समेटा भी तो सिर्फ जलाने के लिए दोस्तों। और कार्यक्रम में इस बार

प्यारे दोस्तों, प्रोग्राम में ये खास खास नंबर है जो हम आपके लिए प्रस्तुत किए, यही मैं सोच रहा हूँ कि आपको पसंद आया हुआ होगा, क्योंकि पसंद हो जो तुम्हें, पसंद हो जो तुम्हें, वही बात हम अक्सर करते हैं। पसंद हो जो तुम्हें, वही बात हम अक्सर करते हैं, मगर शायद हम करते हैं, मगर शायद हम करते हैं, इसलिए तुम्हें पसंद नहीं आता। दोस्तों, ये बातचीत होता है प्रोग्राम फाहून हिंदुस्तानी रेडियो का, आप सुन रहे हो, और ये कार्यक्रम जो है आपके लिए प्रस्तुत होता है 24 घंटे लगातार। तो फाहून हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम आप सुन रहे हो, और ये कार्यक्रम खुशी से आपके लिए प्रस्तुत होता है। हमारी फ्रिक्वेंसी 105.3 MHz दोस्तों, ये दाप रेडियो है, तुकोम्स यही है। और आपको ज़रूर से, अगर आप रेडियो सुनना चाहोगे भविष्य में चलकर, तो ज़रूर से दमोतवेल इंच आंसकाफ़ आंसकाफ़ दाप रेडियो या तो कनाल अख पर हमें पा सकते हो, फ्रिक्वेंसी 105.3 MHz या तो कनाल अख पर हमें आप पा सकते हो इस देश में। और जहाँ भी आप हो, अपने मोटर कार में अगर नया कार है आपको, तो उसमें ज़रूर दाप रेडियो होगा, तो उस पर सुन सकते हो। हमारी प्रिय दोस्तों, यूँ छोड़ कर न जाओ मुझे तनहा इस वीराने में, यूँ छोड़ कर न जाओ मुझे तनहा इस वीराने में, सांसें तुम्हारी बंद हो रही है सांसें तुम्हारी बंद हो रही है, और जान मेरी जा रही है। दोस्तों, और चल के क्या मैं आपको सुनाता हूँ, इस बार चल के सुनते हैं।

दोस्तों आप ये खास खास सुने हैं और कैसा लगा यूं ही जानते रहना तारक नंबर 9 7 3 5 6 2 2 7 4 ये फाहून हिंदुस्तानी रेडियो की तारक नंबर है। कुछ अधूरे से लग रहे हो आज, अब सवाल आप ही से करता हूँ, कुछ अधूरे से लग रहे हो आज, लगता है किसी की कमी इसी है। चेहरे पे मुस्कुराहट है, हाँ चेहरे पे मुस्कुराहट है, मगर आंखों में कुछ नमी सी है। और इसकी जवाब देना है, सुनना है तो सुनो।

हमारे प्रिय सुनने वालों, बहुत अजीब है ये बंदिशे मोहब्बत की, बहुत अजीब है ये बंदिशे मोहब्बत की। ना उसने कैद में रखा और ना हम फरार हुए। तो दोस्तों क्या होगा, ये प्यार की बंधन जो है

तो हमारी प्रिय दोस्तों बेस्ट रेस्टोरेंट से आप जानते हो समुंदर बेबसी अपनी किसी से कह नहीं सकता। समुंदर जो है बेबसी अपनी किसी से कह नहीं सकता। हजारों लाखों मील तक फैला है फिर भी बह नहीं सकता दोस्तों। क्या बात है, इसे आप जो है सहमत हो ना। और प्रोग्राम आप सुन रहे हो जिसमें संगीत हम आपके लिए प्रस्तुत जो कर रहे हैं, तो इस बार

हमारे दोस्तों फाहम पे आप ट्यून है, आप ही की स्टेशन जनता के आवाज है। और जबकि कुछ शेर शायरी पुराना नए नगमे हम आपके लिए जो प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप तार करते हो, आपको हृदय से धन्यवाद, तहदिल से शुक्रिया मैं कर रहा हूँ कि आपकी याद आती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दिल दुखाती रही रात भर, एक उम्मीद से दिल बहलाता रहा, एक उम्मीद से दिल बहलाता रहा, एक तमन्ना सताती रही रात भर। हमारी प्रिय दोस्तों, तो इसीलिए ये नगमा हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

आज है हेमंत डाकी, हेमंत कुमार। गुड मॉर्निंग ऑल दिस दोस्तों।

मत भूलना फाहुन पे चून रहना दोस्तों, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो जो है आप ही की संगीत लिए जो पेश कर रहे हैं, आपके लिए प्रोग्राम करते हैं और हमेशा हर वक्त हर पल जब आप सुनना चाहेंगे तो यूं ही अपना फोन को ऑन कीजिए, यानी कि ही दोस्तों और खास करके फोन को ऑन कीजिए और प्रोग्राम सुनते रहिए इंटरनेट के जरिए से अपने फोन पर, पीसी पर, टैबलेट पर और घर पर जो है दिया भी रेडियो

हमारी प्रिय दोस्तों, यही सोचते हुए नगमा जो चला रहे हैं हम आपके लिए, सोचते हुए यही बात कि आपको हमारी प्रोग्राम जो है और ख़ास करके आपको पसंद आता हुआ होगा,

0: Vahon Hindustani Radio.
1: हाँ हमारे दोस्तों, कार्यक्रम आप सुन रहे हो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की। Wens u een mooie dag, een gezegende dag.

तो रिश्ते के बाद जो हम करते हैं दोस्तों, एक रिश्ता जो कायम रहता है और वो रिश्ता जुड़ा है और वो रिश्ता कभी नहीं टूट सकता है। दोनों प्रेमी आपस में प्यार करते हैं और सच्चाई से ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन ऐसा बात यह है कि सच्चाई है, यूँ ही मैं आपसे कहता हूँ कि जब किसी ने आपको छोड़ना चाहता है, जब किसी ने आपको छोड़ना चाहता है तो वो किसी भी छोटी सी बात को वजह बना लेते हैं दोस्तों। आप जानते हो जिसे के ऊपर ये बीता है वही जानता है और वही आपसे बतला सकते हैं।

हमारे दोस्तों प्रोग्राम में ये प्यार भरी नगमा आप श्रवण किए और बातें चीत होते चलता है और एक नगमा यहाँ जो मैंने आपके लिए चुन रखा हूँ और गुजारिश पर आप ही की गुजारिश पर फिर से एक बार ये नगमा हम पेश करने जा रहा हूँ। लेकिन सच्चाई हकीकत आपसे बतलाता चलूँ कि ये सच्चाई है हकीकत है दोस्तों, अगर आप सही हो, अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा दोस्तों। और वो वक्त पर समय पर, यही तो समय है, यही वक्त है, इसे वक्त कहते हैं।

नॉन स्टॉप हिट सिलेक्शंस हम आपके लिए जो पेश कर रहे हैं। तो खामोशी के बारे में आपसे कहूं कि इंसान की खामोश से नाराज मत हुआ करो, इंसान की खामोश से यानी कि खामोशी से नाराज मत हुआ करो, क्योंकि अक्सर टूटे हुए लोग खामोश रहा करते हैं। हमारी प्रिय मित्रों और दोस्तों, प्रोग्राम जो सुन रहे हो, तो इस बार जो नंबर हम आपके लिए आपके चुन रखा हूँ और चल के सुनते हैं।

तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ स्टेशन द म्यूजिक स्टेशन दोस्तों, और ख़ास करके फाहून हिंदुस्तानी रेडियो जो है, हर एक पल आप इसे सुन सकते हो जब आप चाहो और जहाँ भी आप चाहो हमारी दोस्तों। यूँ ही मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बेशक एक इंसान जो होते हैं अच्छे अकल से खूबसूरत बनता है दोस्तों, बेशक इंसान जो है अच्छे अकल से खूबसूरत बनता है, अच्छी सूरत से नहीं। इसे आप जो सहमत हो, बैंक मैथ दिस टेलिंग

0: हमारे दोस्तों प्रोग्राम में ये खास नंबर अभी आप सुने और आप जो साथ दे रहे हो दंक वेल हमारे तार को नंबर 2 7 2 7 7 है दोस्तों। और ख़ास करके ये कार्यक्रम फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के है, 24 घंटे लगातार हर एक पल आप सुन सकते हो। और खुशी के बात ये है कि मैं खुश हूँ कि आप साथ जो दे रहे हो। तो आगे में चल के सगी जो हम आपके लिए पेश करें, ज़रा से ये बात बतलाता चलूँ दोस्तों, और ये बात मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बातें चीज जो होते हैं आपसे, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हो अवश्य ये मुमकिन है। और आपके यूं ही तार पकड़ के और तार फ़ोन करना पड़ेगा कि ज़िंदगी का तजुर्बा तो नहीं दोस्तों। हमें ये ज़िंदगी औकात के बारे में मैं आपसे कहता हूँ कि किसकी औकात कैसे कहाँ तक है, ज़िंदगी का तजुर्बा तो नहीं लेकिन इतना मालूम है। हाँ दोस्तों, ज़िंदगी का तजुर्बा तो नहीं लेकिन इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है, काम आ जाता है। और बड़ा आदमी जिसे कहते पैसे वाले लोग नो जो दोस्तों और हमारे मित्रों, कि बड़ा आदमी छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा जाता है, ये तजुर्बा आपके है, हुआ है कभी आपके साथ ऐसा कुछ? तो यूं ही आप कह सकते हो।
1: I

आप भी और इसमें गुनगुनाएं दोस्तों, ये नंबर जो हम आपके लिए पेश करते हैं और किए दोस्तों आप ही के लिए, ये किस्मत जो हमारी है, किस्मत ने, हाँ दोस्तों किस्मत से फैसले नहीं बदलते, किस्मत ये जो हमारी है फैसले से किस्मत नहीं बदलते, लेकिन फैसलों से किस्मत बदल सकती है दोस्तों, ये कहना है और हमारी प्रोग्राम आगे के बढ़ाते हुए

तो हमारी प्रिय दोस्तों, प्रोग्राम जो सुन रहे हो आप खुश हो, मैं खुश हूँ और साथ में मिलके कार्यक्रम चलते हैं। फाहून के मत भूलना और सुनते रहना। आपके तार करने के लिए भैया, ख़ास करके जो अभी अभी आपने फ़ोन किए, आपको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कि यही कह दूँ आपसे कि खुदा अगर मांगे पर बंदा देता है, खुदा अगर मांगे पर बंदा देता है तो गुरूर करने पर छीन भी लेता है। दोस्तों आप सुने ना कि खुदा जो है, खुदा अगर मांगे पर देता है, खुदा अगर मांगे पर देता है तो गुरूर करने पर छीन भी लेता है। और आपने तार किए डंकवेल, और आप ही के नाम से ये नंबर तो चलाते हम।

नमस्कार भरीने माँ दोस्तों, और यूं ही बातें चीत होते रहते हैं आपके साथ मिलकर, क्यों यूं ही, और खुदा अल्लाह भगवान सब एक ही है ना, जितने भी है और दुनिया में कितने नाम से उनके पुकारते हैं, फिर भी ये हर एक के दिल की तसल्ली वो देते ना कि अल्लाह जब भी हालात बिगड़े, अल्लाह खास करके यही बात कहते हैं और जिस नाम से आप भी पुकारो आपको कल्याण होगा, जब भी हालात बिगड़े मेरे तब दिल को तसल्ली के लिए यही काफ़ी है दोस्तों। जब भी हालात बिगड़े मेरे तब दिल को तसल्ली के लिए यही काफ़ी है, अल्लाह बहुत बड़ा है दोस्तों। यूं ही कहते कहते प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं हम। हम नहीं, हमता में गुरूर है, मैं कहता हूँ

फाहुंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहुंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 97.3 FM। फाहुंट हिंदुस्तानी रेडियो।

तो हमारे प्रिय प्रिय सज्जनों, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ हमारे सुरिनाम देश का एक जबरदस्त गायक, उस्तादों का उस्ताद, बैठक गाना का महा महागुरु और इंटरनेशनल कलाकार, द मैन विद द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस फ्रॉम द बैठक गाना डायनेस्टी फ्रॉम सुरिनाम, उस्तादों का उस्ताद मैस्त्रो रवि उदित राम।

महान कलाकार हमारे सुरीनाम देश का, जिस पे हमें नाम से गर्व है, उस्ताद का उस्ताद श्री रॉबी उदित राम जी। अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को एक नौजवान कलाकार हमारे सुरीनाम देश का, आदित्य राम सुकुल जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर मजेदार सॉन्ग आप सुनेंगे, स्वीट मेलोडीज फॉर एवर 2024 से निकला हूँ और बिल्कुल नया सॉन्ग है, कुछ दो हफ्ते पहले रिलीज किया गया है, तो मिलके सुनते हैं। मैं फूखल इशो फूखल मोर चिड़ैया तोर चिड़ैया इक्के में मिला दे मजेदार सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम, एंजॉय।

0: क्या बात है, शाबाश शाबाश मंदिर, बिल्कुल नया सॉन्ग है, मजेदार सॉन्ग, खसोंगदोर आदित्य राम सुकुल जी, नौजवान कलाकार हमारे सूरीनाम देश का। साउंड हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है यार, साप्ताहिक प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सरनामी संगीत। एक और जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडिस का मैस्त्रो दीपक कन्हई जी को लाते हैं प्रोग्राम में, और वो सुनाते हैं कुछ की भाग बोई जा जा जा रे।
1: तुम हो, हम है, न तुम कम हो न हम कम है।

एकदम शाबाश शाबाश नौजवान कलाकार हमारे हॉलैंडीज का जबरदस्त गायक द ग्रेट मैस्त्रो दीपक कन्हई जी विथ इस म्यूजिक फरमासी रिश्ता। अगला बयान के तरफ बढ़ते हैं एक और जबरदस्त गाने वाली हमारे हॉलैंडीज का मिस काजल भग्गू जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं आप सभी को बोलावे रसिया। एंजॉय द सरनामी संगीत।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया और सुनाने वाली थी इस जमाने के मशहूर गाने वाली हॉलैंडीज का मिस काजल भग्गू। अगला बयान एक मजेदार सॉन्ग है और सुनाने वाले हैं हमारा यारों का यार एक ही गांव के हम लोग हैं हैस फन मखेंता एंड एक बैन फन डाम कांति रिवेट इन द ब्यूट फन मुकेश बार एंड एल कैन एल कार है लंग उस्ताद रॉबी गोबगार के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुने कुछ झगड़ा के बारे में फेत फेती बाया स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम
1: सुनिला घर में फिर

शाबाश मशहूर गाने वाली सुरीनाम दे सोलंडिस का द ग्रेट चटनी क्वीन फ्रॉम हॉलैंड उस्तादिन बिजानवती चैतू जी। अगला बयान एक और अति सुंदर सॉन्ग है, इस चटनी सॉन्ग और सुनाने वाला है आप सभी को मशहूर गायक हमारे हॉलैंडिस का स्टीफन रघुनाथ जी के ब्यूटीफुल आवाज में दोनों नैना।

शाबाश शाबाश, जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडीज का स्टीफन रघुनाथ जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग आप श्रोताओं ने सुना। फोन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो साप्ताहिक प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सरनामी संगीत का एक और जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडीज का उस्ताद का उस्ताद द लायन ऑफ बैठक गाना, महान फनकार जिस पे हमें नाज है गर्व है, देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी का ये सुपरहिट सॉन्ग नहीं चाहिए रंग महल।

फन हंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9753523 तक सेवन फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: थे डिंग डोंग ओ बेबी सिंग सॉन्ग। खास है वो लोग जो वक्त आने पे वक्त दिया करते हैं। एक बहुत से सुंदर गीत हम चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, शबीर कुमार और लता जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी बेताब से हम पेश करते हैं।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

आप सुन रहे थे जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, लता जी के साथ में शबीर कुमार आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी बेताब से हमने पेश किए हैं। रिश्ते ज़रूरत के हो तो कभी खुशी नहीं देते और जज्बात के हो तो कभी साथ नहीं छोड़ते। सोनी मेरी सोनी सोनी अनवर के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सोनी महिवाल से, अनवर और आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे सोनी मेरी सोनी सोनी, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, फ्रॉम द मूवी सड़क से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम जो ना आते तो हम मर जाते। मनहर उदास के साथ में अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी सड़क से हमने पेश किए हैं। काश लोग ये समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे की फिक्र करने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। ओ दिल भर जानिया, फ्रॉम द मूवी प्यार झुकता नहीं आपको सुनाने वाले हैं लता जी के साथ में शबीर कुमार जी।

लता जी के साथ में शबीर कुमार आपको सुनाने वाले थे वो दिलबर जानिया फ्रॉम द मूवी प्यार झुकता नहीं। इस तरह आशिकी का अशर छोड़ जाऊंगा अमित कुमार आपको सुनाने वाले हैं।

अमित कुमार आपको सुनाने वाले थे इस तरह आज की का असर छोड़ जाऊंगा। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, वादा रहा सनम होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे समाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं उनको समझना आसान नहीं होता।

अभी आप सुन रहे थे वादा रहा सनम होंगे जुदा न हम चाहे न चाहे समाना, अलका याग्निक के साथ में। अभिजीत आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी खिलाड़ी से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों एक और गीत हो जाए आप सभी के वास्ते, और गीत का बोल है राह हमें उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई।

जी हाँ सुनने वालों, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी मिस्टर एंड मिसेस 55 से आप सुनेंगे, और गीत का बोल है जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी। मोहम्मद रफ़ी के साथ में गीता दत्त आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद यानी मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, फ्रॉम द मूवी मिस्टर एंड मिसेस 55। दिल की आवाज़ भी सुन मेरे फसाने पे ना जा, मेरी नज़रों की तरफ देख जमाने पे ना जा। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं और मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, वो ये है जो लोग दिल से फिक्र करते हैं वो सुबह से ज़ाहिर नहीं करते।

अभी आप सुन रहे थे दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे ना जा, मेरी नजरों के तरफ देख जमाने पे ना जा। फ्रॉम द मूवी हमसाया से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। जिंदगी में उस इंसान को मत खोना, जिंदगी में उस इंसान को मत खोना जो गुस्सा करके फिर खुद तुम्हारे पास आए। जिक्र होता है जब कयामत का, मोहम्मद रफी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों। फ्रॉम द मूवी माय लव से आप सुनेंगे, क्षमा करना सुनने वालों, मोहम्मद रफी जी नहीं बल्कि मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं। द माइटी मुकेश की आवाज़ में आप सुनेंगे।

दमाईती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे, जिक्र होता है जब कयामत का, फ्रॉम द मूवी माइल ऑफ से हमने पेश किए हैं। हमारी नीयत की पैमाइश इस वक्त होती है जब हम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करें जो हमें कुछ नहीं दे सकता। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में आते तो कुछ और बात होती। कन्यादान है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं।

मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती। अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुना रहे थे फ्रॉम द मूवी कन्यादान से, वो तेरे प्यार का गम। फ्रॉम द मूवी माय लव से आप सुनेंगे द माइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं।

दमायती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे वो तेरे प्यार का गम, माई लव है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। ना आदमी का कोई भरोसा, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं फ्रॉम द मूवी आदमी।

0: बातें।
1: अभी आप सुन रहे थे ना आदमी का कोई भरोसा, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी आदमी से हमने पेश किए है। परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म, और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी माया से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कोई सोने के दिल वाला कोई चांदी के दिल वाला शीशे का है मतवाले मेरा दिल, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा, गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा, ये जिंदगी है यार, यहाँ तारीफें भी होंगी और जलील भी किया जाएगा। मुकेश आपको सुनाने वाले हैं और विश्वास है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते चांद की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया।

अभी आप सुन रहे थे चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। ये वन ऑफ माई पापा's फेवरेट सॉन्ग थे और ये हमेशा मुझे याद रहेगा। फ्रॉम द मूवी विश्वास से हमने पेश किए हैं, द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, प्रोफेसर है फिल्म का नाम और गीत का बोल है ए गुलबदन। ये गीत हम पेश करते हैं शर्ली जी के वास्ते, जबकि शर्ली जी प्रोग्राम को भी सुन रही है, तो शर्ली ये स्पेशली आपके लिए है।

प्रोफेसर है फिल्म का नाम और मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे ए गुलबदन। और ये सॉन्ग हमने पेश किया है स्पेशली शर्ली जी के वास्ते, जबकि शर्ली जी प्रोग्राम को भी सुन रही है। रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले। दमाइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

तमाईती मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार, जी ना रूठो ना रूठो ना रूठो मेरी जा, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी जवान मोहब्बत से। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे ना रूठो रूठो ना रूठो ना रूठो मेरी जा, फ्रॉम द मूवी जवान मोहब्बत से अभी हमने पेश किए हैं और आपको सुनाने वाले थे आशा भोसले के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी। धड़कन है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मैं तो चला जिधर चले रास्ता।

मैं तो चला आज इधर चले रास्ता भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परवाना से हमने पेश किए हैं। जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन में एक सपना सा जगह है। मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी परवाना से हम पेश करते हैं

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परवाना, से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जी की आवाज़ में, जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिल में एक सपना सा जगा है। लहरा के आया है झोंका बहार का, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी वारिस से आप सुनेंगे।

फ्रॉम द मूवी वारिस से हमने पेश किया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में लहरा के आया है झोंका बहार का। ओ दिलबर जानिए तेरे हैं हम तेरे, फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी।

ओ दिलबर जानिए तेरे हैं हम तेरे। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी से हमने पेश किए हैं। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है आशा भोसले और किशोर डा की आवाज़ में आप सुनेंगे दूरियां नज़दीकियां बन गई अजब इश्तफाक है।

दूरियां नजदीकियां बन गई जब इस्तीफा है, आशा भोसले के साथ में किशोरदा आपको सुनाने वाले थे। जवान तुम हो जवान हम है, ये प्यार तुमसे हो गया है, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले ज़रा मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, ज़माने वाले हमें इतना गरीब समझते हैं, ज़माने वाले हमें इतना गरीब क्यों समझते हैं, उनको मालूम नहीं कि हम दर्द की दौलत से मालामाल हैं।

अभी आप सुन रहे थे जवान तुम हो जवान हम है, ये प्यार तुमसे हो गया है। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। फ्रॉम द मूवी जीवन रेखा से हम पेश करते हैं यार मेरे मेरी बाहों में आ जा, और ये गीत हम पेश करके हैं खास करके दो व्यक्ति के वास्ते, यानि विद्या जी और संता जी के वास्ते, जबकि ये दोनों प्रोग्राम मिलकर सुन रहे हैं। तो चलिए ये गीत हो जाए उन दोनों के नाम।

मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी जीवन रेखा से हमने पेश किए हैं यार मेरे मेरी बाहों में आजा और ये गीत हमने पेश किए हैं विद्या जी और शांता जी के वास्ते जबकि ये दोनों प्रोग्राम सुनते हैं। दिल बेकरार सा है

मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे दिल बेकरार सा है। मोहम्मद रफ़ी प्रोग्राम में फिर से आ रहे हैं सुनने वालों, जियाओ जियाओ जिया कुछ बोल दो।

अभी आप सुन रहे थे जियाओ जियाओ जिया कुछ बोल दो, गुमराह है फिल्म का नाम। और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले जी की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे इन हवाओं में इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे, फ्रॉम द मूवी गुमराह से हमने पेश किए हैं

आप सुन रहे थे जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। ताजमहल है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं, गीत का बोल है अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आ रे आ रे आ रे।